गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध बिचारे, गावन तुदनो जति सती संतोखी, गाव

ले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मश पयाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे

आई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई।

आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे वड्डा ना होवै घाट ना जाए। ना ओह मरै ना होवै सोग देंदा रहै ना चूकै भोग। गुण एहो होर नाहीं कोए ना को होआ ना को होए।

सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोए न किस की तरिया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पाओ करिया। उडे ऊड आवै सह कोसा, तिस पाछै बचरे शरिया, तिन कवण खलावै कवण चुगावै, मन मह सिमरन करिया। सब निधान दस अष्ट

तेरा अंत न पारावरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख एको ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन, हर अगम अगम अपारा। सब त्यावै सब त्यावै तुद जी, हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावह संत हो जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर ना जाना। तू

सिमरत शाश्वत जी प्रक्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावै मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई तू जोग जोग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई तुद आपे पावै सोई वरतै जी तू आपे कर है सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा तू करता सचियार मैंडा साई जो तौ पावै सोई थीसी जो तू देह सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा कर है तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाता मन मुख गवाया तुद आप विछोड़या आप मिलाया

विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखा है जाने सोए, जन नानक गुरमुख परगट होए। आसा महला पहला तित सर वरड़ै पहिले निवासा, पानी पावको तिन्ह किया। पंकजो मोह पाग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले। मन एक ना चेतस मूड़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पड़या, मूर

मिल साध संगत पाजो केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाऊ।

कर्मा शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबेव बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरनन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रत पारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावह, आप हाथ दय मोहे बचावह। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब बैरन कौ आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊ, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दय मुझे उबरिया है, मरण काल का त्रास निवरिया है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तो जजू करे हौ रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाये प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कार बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सेवकियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जक्षण उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाद कियो। काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर या सथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशाना, काट काट के पट पट की जाना। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे तार सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आप आपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्बकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत पेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कर्पाहन अनुमानत, महामूड काश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत पूज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर एकैठा। सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव।
अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबारो आसिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत पाता, सकल मलेश करो रण कहता।

तनक मोह हरे हो, रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास

सवैया। पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना माने। सिमरत शास्त्र वेद सबै, बह भेद कहे हम एक ना जाने। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहे ओ सब तुहे बखाने। ओ दोहरा।

राम कली महला तीजा आनंद एको ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां, सब दोता गावहो हरि केरा मन जिनी वसाया। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा। अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारणा।

सदा रहो हर नाले साचे साहिबा, क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा सब किश है। जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसया, वाजे शब्द कन्हेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटहाओ, जिस दिया ए वडियाइया, कह नानक सुनो संतो हो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित घर तारिया, पंच दूत तुद वासो कीते, काल कंटुक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन काओ, से नाम हर कै लागे, कह नानक तह सुख हुआ, तित घर अनहद।

Gracias.

साहिब जी सतनाम वाहे गुरु साहिब जी तू ठाकरो बैरागरो मैं जे ही कान चेरी राम तू सागरो रतनागरो

तू वड दाना कर मेहरम मत साई, कृपा की जय सा मत दी जय, आठ पहर तुद त्याई।

दयाल नाम देहु मंगत जन का सदा रहूं रंग राता हो दयाल नाम देहु मंगत जन का सदा रहूं रंग राता सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ पौड़ी आपे जगत उपाय कै गुण अवगुण करे विचार त्रै गुण सर्व जंजाल है नाम न धरे प्यार आपे जगत उपाय कै गुण अवगुण करे विचार त्रै गुण सर्व जंजाल है नाम न तरे प्यार गुण छोड़ अवगुण कमाव दे दरगाह हो हे खुआर जुए जन्म तिनि हारिया कित आए संसार सच्चे शब्द मन मारिया अहनिस नाम प्यार जिनी पुरखी उर तारिया सच्चा

असि अवगणयार। जिस बक्से सो पाए सी गुर शब्दी विचार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग साहिब सतगुरु गुरु गरीब नवाज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब कृपालु सतगुरु जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान गुरु रूप सत्संगी जनों आप जी वडभागी हो जो श्रद्धा प्यार अदब सहित गुरु चरणा विच शामा दे दीवान दी हाजरी पर रहे हो। प्यार सहित गुरु चरणा विच जुड़ बैठ के आप जिया ने पावन बाणी दा कीर्तन भाई साहब भाई प्रतपाल सिंह जी रसीला अते उन्हां दे जत्थे पासों सरवन कीता है। आओ समा होया अमृत बाणी दी विचार दा कथा दा। आप जिया ने पावन पवित्र पौड़ी दा पाठ सरवन कीता है जो मलार राग अंदर गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी पावन वार है। उस वार दी ये 13वीं पौड़ी है। इस दे नाल दो श्लोक सतगुरां ने दर्ज कीते हन जिन्हां दी विचार कल हो चुकी है। श्लोक तीसरे गुरु धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे श्री कंठ तों उच्चारण कीते गए हन जिन्हां दा भाव विचार आपां कल समझिया सी कि गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी ने बबीहा रूप जीवात्मा नूं इह समझाया सी कि इह जीवात्मा जे तूं वाहिगुरु परमेश्वर दा संग प्राप्त करना चाहनी है उहदे विच अभेद होना लोड़दी है तां तैनूं गुणां दा विथार करना पएगा। उस अकाल पुरख दे गुणां नाल जुड़ना पएगा। गुण कह गुणी समावणिया वाली तेरी अवस्था जिन्ना चिर नहीं बनेगी तू दे विच अभेदता हासिल नहीं कर सकती। ते ओ गुण कहण दी ताकत समझ तेनू उहदी कृपा नाल उहदी बख्शिश नाल प्राप्त होनी है। ते बख्शिश जिहड़ी है ओ अरदास दे नाल जोधनी दे नाल तरलिया नाल प्राप्त होनी है। इस लोकां दा भाव सी। अज गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने पौड़ी नूं गुरदेव पिता महाराज ने उच्चारण किया है। पौड़ी का भी जो भाव है कि जिदे त्यो बख्शिश कर दे जिदे त्यो कृपा कर दे उन्हूं ही वो कृपा नाल अपने शब्द की विचार बख्शिश करता है अपनी सोझी बख्शिश करता है। ये जगत संसार उन्हें आप पैदा किया है विच त्रैगुणी माया रखी है गुण ते अवगुण रखे ने इन्हां गुणां ते अवगुणां विच जीव जिहड़े ने फसे हुए ने। इस बुझारत विच इस खेल विच जीव आत्मावां फसियां होईयां ने जिदे ते गुरु कृपा करदा गुरु बख्शिश जिन्हां नूं प्राप्त हुंदी है शब्द दे मार्ग ते तुर के उह इस गुंझलदार पहेली नूं हल कर लैंदे ने ते उह वाहिगुरु दे घर अंदर निवाजे जांदे ने बख्शे जांदे ने। इह गुरु साहिब जी ने अज दी पौड़ी दा सार दर्शाया है। गुरु कृपा करे आपां इस पावन पौड़ी नूं वाचन दा यतन करांगे गुरु संदर्भ विच रह के विचारां दी आरंभता तो पहलां रसना पवित्र करदे होए प्यार सहित उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। फिर उच्चारण करो जी सत

شرمیده.

चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बंदराय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे कहो सहस मूर्त ननायक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध विचलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिसदा चानन सब मह चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जोत सुभावै स्वार्थी होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अनदनो मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारिंग का होए जाते तेरे नाहि वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मिल साधु खंडु खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर रस साधना जानिया तने अंतर हो मैं कंडा हे ज्यों ज्यों चलह चुपै दुख पावै जमकाल सह सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सो

की गुर राम दास राखो सुकहु टल गुर सेवी अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु जन्म मरण होवै सिफत खसम दी नूरे अरसों पुरसों तुद डिठे सचे पात सा मल जन्म

जन नानक सुख घर आया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवां। गुरपूरै कृपा धारी, प्रभ पूरी लोच हमारी। कर इसनान गृह आए, अनद मंगल सुख पाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब सतगुरु, धन गुरु ग्रंथ साहिब गरीब नवाज सतगुरु जी ने कृपा कीती है। अमृत वेले पावन तख्तां ते प्रकाशमान हो करके दर्शन दीदार बख्शिश कीते हन। अज दे पावन श्री मुखवाक सतगुरु जी पासों आप जी ने सरवण कीते हन। सोरठ राग अंदर पंचम पातशाह जी दा पावन शब्द पवित्र अंग 621 अते 22 उपर सुभायमान है। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने इस पावन शब्द विच एक कृपा मेहरामत कीती है कि जिन्हां उत्ते पूरे गुरु की कृपा हो जाए, पूरे गुरु कृपा सदका प्रभु प्यारियां दा संग उन्हां दी बख्शिश प्राप्त हुंदी है। जो भी जीव तन मन दा इसनान करके अंतरात्मा निर्मल हो करके अपने निज घर अंदर विराजदे ने टिकदे ने, उन्हां नूं ही अंदर दी खुशी अंदर दा आनंद प्राप्त हुंदा है। उही सारे रोग दोख कलेशां नूं मिटा करके वाहिगुरु दे घर अंदर चरणां अंदर प्रवान हुंदे ने, सारे बिघनां दा रोगां दा उह नाश कर लैंदे ने। जिन्हां नूं गुरु ने अपने मंत्र नाल जोड़ लिया है, जिन्हां दे हिरदे विच वाहिगुरु दा मंत्र पक गया है, दृढ़ हो गया है, उन्हां नूं जीवन दा कोई दुख कोई तकलीफ दुखी नहीं कर सकती। उह सदा हिरदे तों वाहिगुरु दे नाम नूं आराधदिआं आनंद ते सुख प्राप्त करदे ने, आनंद ते सुख महसूस करदे ने। सतगुरु जी कृपा करन, सभनां नूं दरों करूं नाम दान, गुरसिक्खी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजन जी। आओ हुण श्री सुखमनी साहिब जी दे पाठ होणगे। भुल्लां चुक्कां दी खिमा समूह संगत दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। गौड़ी सुखमनी महला पंजवां। श्लोक एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आद गुर ए नमः, जुगाद गुर ए नमः। सतगुर ए नमः, श्री गुरुदेव ए नमः। अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावों, कल कलेश तन माहे मिटावों। सिमरौ जास बिसम परे कै, नाम जपता गंत निकै। वेद प्राण सिमरत सुदाख्यर, किने राम नाम एकाख्यर। किनका एक जिस जीव सावै, ताकि महिमा गनी न आवै। काकि एक दर्श तुहारु, नानक हुन संग मोहे उधारु। सुखमणि सुखमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहाउ। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन्न दिन जागै। प्रभ कै सिमरन भउ न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ कै सिमरन साध कै संग, सर्व निदान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा। प्रभु कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभु कै सिमरन दरगह मानी। प्रभु कै सिमरन हुए सो भला, प्रभु कै सिमरन सो फल भला। से सिमरै जिने आप सिमराए, नानक ताकै लागू पाए। प्रभु का सिमरन सब ते उच्चा, प्रभु कै सिमरन उदरे मुच्चा।
प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभु कै सिमरन सब के सूझै, प्रभु कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रुद माहे समाए, प्रभु जी बसै सात की रसना, नानक जन का दर्शन दसना, प्रभु को सिमरै से तनवंते, प्रभु को सिमरै से पतवंते, प्रभु को सिमरै से जन परवान, प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरै से बे मोहताजे, प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरै से सुखवासी, प्रभु को सिमरै सदा विनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभु को सिमरै से परोपकारी, प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरै तिन दुख नेरी, प्रभु को सिमरै बसै हर नेरी, संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग, प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबू न चूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सह समानी, प्रभु कै सिमरन निचले आसन, प्रभु कै सिमरन कमल विगासन, प्रभु कै सिमरन अनहद चिनकार, सुख प्रभु सिमरन कंत न पार, सिमरै से जन जिन को ब्रह्म भया, नानक तिन जन सरनी पाया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाए, हर सिमरन पय सिजति दाते, हर सिमरन नीचों कुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, श्लोक दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ सात अष्टपदी, जय मात पिता सुत मीत न पाई, मनुहा नाम तेरे संग सहाई, जय महाप्यान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै, जय मुश्किल होवै तुपारी, हर को नाम किन माहे उधारी, अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कूट पापर हरै, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया, लाख करोरी बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तरै, अनिक माया रंग तिक न बुझावै, हर का नाम जपत आगावै, जे मार्ग जात केला, तै हर नाम संघो सुहेला, ऐसा नामन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है, छूटत नहीं कोट लखबाही, नाम जपत तै पार पराही, अनिक बिगन जय आय संघारे, हर का नाम तत्काल उधारे, अनिक जुंजन में मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, ओ मैला मल कबू न तू वै, हर का नाम कूट पव को वै, सा नाम जपो मन रंग, नानक पाईए साध कै संग, जे मार के गण जाहे न कोसा, हर का नाम उहां संतोषा, जे पैडे मंद गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जा पंथ तेरा को ना सुझानू, हर का नाम तै नाल पछानू, जय महाभ्यान तपत भुकाम, तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम, जा त्रिका मन तुझ आकर कह, तह नानक हर हर अमृत बर कह, भग जना की वर्त नाम, संत जना कह मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट, हर जस कर संत दिन रात, हर हर औक साथ कुमात, हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन किन्नो दान, मन तन मन तन रंग रते रंगे कै, नानक जन कै ब्रत विवेकै, हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर कै नाम जन को तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत का परै न भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कचना है प्योग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा, हर हर जन कै मालक जीना, हर धन जन को आप प्रभु दीना, हर हर जन कै ओट सुतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोजन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते, आठ पैर जन हर हर जपै, हर की भगत प्रकट नहीं छ, हर का भगत प्रकट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त भो करे, नानक जन संकेते तरे, पार जाते हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर दुख लत्ता, नाम की महिमा संत दिवसै, संत प्रताप दुर्ग सब नसै, संत का संग बुट भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल कछ अवर न हुए,
नानक गुरमुख नाम पावै जन को। श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल, पूज सुनाई हर हरे नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, कट शास्त्र सिमृत व्याख्यान, योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, अनेक प्रकार की ये बचतना, पुन दान हम में बहुरतना, शरीर कटाए हम मैं कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती, नहीं तो राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपी एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिर चिर जीवे, माँ उदास तपी सरथी, वैगन वाय होमत प्राण, कनिक सुहैवर भूम दान, न्यौली कर्म करे बहु आसम, जैन मार्ग संजम साधन, निमक निमक कर शरीर कटावे, तौ पी हो मैं मैल न जावे, हर के नाम संसर कछनाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, मन कामना तीरथ दे छुट्टे, गर्व गुमान मन ते उठे, सोच करे दिन सरात, मन की मैल न तनते जात, इसलिए ही को बहु साधन करे, मन ते कबू न बिखिया टरे, जल तो वह बो दे अनी शुद्ध का हो काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहुमूच, बहुत सियाणप जम का पव्या पैन, कि जतन कर तृष्ण ना त्रापै, भेख नि गि बुझै, कोट पाव दर गै नि सिजै, छूट सुनाही उपयालो, मोहि व्यापै माया जालो, वर कर तू सगली जिम डानै, गोविंद भजन बिन तिन्ने मानै, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सह सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगै, साजना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सुध गावै, जे को अपनी शोभा लोरै, सा संगे होमे चूरै, जे को जन्म मरण ते डरै, साजना की सरनी परै, जिस जन को प्रभु दस प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा, सगल पुरख में पुरख प्रधान, सा संग जा का मिटै अभिमान, आपस को जो जानै नीचा, सो गणिया सब ते ऊंचा, क्या का मन हुई सगल किरीना, हर हर नाम जिन कट कट चीना, मने अपने ते बुरा मिटाना, पेक है सगल सिर साजना, सुख दुख जन समदृष्टिता, नानक पाप नहीं लिपा, निर्धन को तन तेरु नाओ, नितावे को नव तेरा ताओ, निमाने को प्रभु तेरु मान, सगल कटा को देव उदान, करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गत में जान हुआ पे, अपन संगा प्रवराते, तुमरी उस्त तुम ते हुए, नानक अवर न जान सकोए, सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, सात संग दुर्मत मल हिरिया, सगल उद्यम में उद्यम भला, हर का नाम जपो जी सदा, सगल बानी में अमृत बानी, हर को जस सुन सुन बकानी, सगल तान ते उत्तम था, नानक जी कटवसे हर नाम। श्लोक निर्गुण यार एनिया, सो प्रभ सदा समाल, जिनकी आतिश चित रख, नानक निभि नाल। अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू सा स्वार सी गारिया, गर्भगन में जिन्हें वारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, पर जो बन भोजन सुख सूद, बिरद पै उपर सख सैन, मुखे पयाओ बैठ को दैन, एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै, बख्श ले हो तो नानक सी जय, जे प्रसाद धारू पर सुख बसै, सुत प्रात मीत बनता संघसै, जे प्रसाद पीवै शीतल जला, सुखदाई पवन पव कमुला, जे प्रसाद भोगै सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा, दीने हस्त पाव करने तरसना, किसे त्याग और संरचना, ऐसे दुख मुड़ंद व्यापे, नानक काट लेव प्रभ व्यापे, आदंत जो रखनार, तिस्य प्रीतन करे गुवार, जाकी सेवा नवनिद भावे, तासे मूड़ा मन नीलावे, जो ठाकुर सा सदा हजूरे, ताको वंदा जानत दूरे, जाकी टहल पावे दर के मान, किसे बिसारे मुग्ध जान, सदा सदैव पूर्णहार, नानक रखनहार अपार, रतन त्यागो डी संग्रचय, सा छोट छोट संग मचय, जो छुटना सो अस्त्र करमान, जो होवन सो दूर परान, छूट जाए जिसका श्रम करे, संग सहाय तिस पर हरे, चंदन लेप उतारे तो वे गर्द प्रीत, प्रसन्न संग होए अंधकूप में पशु बिकराल, नान काट लो प्रभु दयाल, करतूत पशु की मानुष जात, लोक पचारा करे दिन रात, बाहर पे कंथन मल माया, छुप सुनाए कछ करे छुपाया, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापै लोभ सुहान, अंतर अगन बार दुन स्वाहा, गर्भ अत्र कैसे त्रेता, जाके अंतर बसै प्रभ आप, नानक तेजन सह सुमार,
सुनेंदा कैसे मार्ग पावे, कर गए लिहोड़ निभावे। कहाँ बुझारत बुझे डोरा, निष्कहिए तो समझे पूरा। कहाँ विष्णु पद गावे कुंग, चितन कर तो भी सुर भंग। कहे पिंगल पर्वत पर पवन, नहीं हो तू हाँ उस गवन। करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरे। संग सहाय सुहावे न चीत, जो बैराई तास्यो प्रीत। बलुआ के गृह पितर वसे, अनद किल माया रंग रसे। दृढ़ कर मन मने प्रतीत, काल न आवे मूढ़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महालोभ त्रोह। याहु जुगत बिहाने के जन्म, नानक राख लिहू अपन कर कर्म। तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम्हारी कृपा में सूख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, उचे ते उचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी, तुम ते हुए स्वाज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास दा कुर्बानी। श्लोक देन हार प्रभ छोड़ कै, लागे आन सुआए। नान कहु न सीजे, बिन आवे पत जाए अष्टपदी। दस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्तु कारण बिकोट गवावे। एक पी न दे दस पी हिर ले, तो मूड़ा कहु कहा करे। जिस ठाकुर से नाही चारा, ताकू की जय सद नमस्कारा। जाके मन लागा प्रमीठा, सर्व सुखता हु मन उठा। जिस जने अपना हुक्म नाया, सर्व थोग नानक तिन पाया। गंध सब अपनी दे रास, खाद पीत पर तैन दुलास। अपनी मान कछ बहुर सावली, ज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीताप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास न होवे। जिसकी वस्तु से आज्ञा राखे, प्रभु की आज्ञा मन ने मत है। उसते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनेक पात माया के हित, सर पर होत जान अनेक। बिर की छाया स्यों रंग लावे, ओबिन से मन पछतावे। जो दिशे सो चलन हार, लपट रहो ते अंध अंधार। वटाऊ स्यों जो लावे ने हिता को हाथ न आवे के। मन हर के नाम की प्री सुखदाई, कर कृपा नान का भले लाई। मिथ्या तान तान कुटम्ब सुबाया, मिथ्या हूँ मैं ममता माया। मिथ्या राज बंधन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती सुभस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेखस्ता। मिथ्या त्रो मोह विमान, मिथ्या पशु पर कर्त गुमान। अस्त्र पग साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरे। मिथ्या नित्र पेखत पर त्रैस रूपाद, मिथ्या रसना भोजनन सुवाद। मिथ्या चरण पर विकार कुतावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे। मिथ्या तन्नी पर उपकारा, मिथ्या बास लिच विकारा। बिन बूझे मिथ्या सब पहे, सफल दे नानक हर हर नाम ले। बिरथी सागत की आरजा, साज बिना कहूत सुचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुखावता कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय, मेघ बिना ज्यो खेती जाए। गोबिंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यो कृपन के निरार्थ दाम। तन तन ते जन जी कट बसियो, हर नाओ नानक ताके बल बल जाओ। रह दबर कछवर कमावत, मन नी प्रीत मुख गंट लावत। जानन हार प्रभु परवीन, बाहर पीत न काहु पीन। अवर उपदेश आपन करे, आवत जावत जन में मरे। जिसके अंतर बसे निरंकार, जिसकी सीख तरह संसार। जो तुम पाने तिन प्रभु जाता, नानक कुंजन चरण पराता। करूं बेनती पार ब्रह्म, सब जाने अपना किया या पह माने। आप है आप करत नबेरा, किसे दूर चुनावत किसे बुझावत नीरा। उपाव से आन को सगल ते रहत, सब को जाने तुम की रहत। जिस पावत लय लड़ लाए, तांत नंतर रह समाय। सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरी। श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सुजाए अहंग मेव। नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी। जे प्रसाद छत्ति अमृत खाही, तिस ठाकुर को रख मन माही। जे प्रसाद सुगंध तन लावे, तिसको सिमरत परम गत पावे। जे प्रसाद वसै सुख मंदर, तिसे त्या सदा मने अंदर। जे प्रसाद गृह संग सुख बसना, अठ पैर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याई त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे,
तिसे त्याग तबर लुभाव है जी प्रसाद सुखसे सोई जय मनाठ करता का जिसका विजय जी प्रसाद तू सबको मान मुक्ता को जिस रसन बकाने जे प्रसाद तिरु रहता धर्म मन सुधा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जब दर गय मान पावे नानक पसेती कर जावे जे प्रसाद रू कंचन देही लिव लावो सुश्राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कह तो जे प्रसाद तेरे सगल चित्र ठाके मन सरनी पारो ठाकुर प्रता कह जे प्रसाद तुझको न पहुंचे मन साफ सा सिमरो प्रभु उच्चे ये प्रसाद पाए दुर्लभ दे नानक ताकि भगत करे ये प्रसाद अपूकन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्त जे प्रसाद अस्व हस्त सुवारी मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी जे प्रसाद बाग मिलक तना रात प्रभु प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठ सच सहते आई तिसे त्याय जो एक अलग कह इहां नानक तेरी रखे जे प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमर सदा रूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करना जे प्रसाद पिखे बिस्मात जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जी बसना जे प्रसाद हस्त कर चले जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पावे जे प्रसाद सुख सह समावे ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावें साच रे मन मेरे तू ता स्वराज जे प्रसाद सबकी गत हुए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विवास प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्व निदान प्रभु तेरी माया को कछु न किन्हु लया जित जित लाभ हो तित लगै हर नाथ नानक इनकै कछु नहात श्लोक अगम गात पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुखता हुए सुनमीता नानक बिनवंता साजना की अचर्ज कथा अष्टपदी साधक संग मुकुजल होत साध संग मिल सगली खोत साधक संग मिटै अभिमान साधक संग प्रगटै सुज्ञान साधक संग बुझै प्रभ नीरा साध संग सब होत नबीरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक उपर जतन साधक महिमा बरने कौन प्राणी नानक साधक सुभा ब्रह्मा सुमानी साध के संग गुचर मिले साध के संग सदा प्रफुल्ल साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हो सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग नकत हुंता वै साध संग स्थित मन पावे साध के संग माया ते भिन्न ना साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न साध संग दुश्मन समीर साधु कैसो महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैरु साधक संग न भीगा पैरु साधक संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग ना ही होता साधक संग तजै सव्याप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साधक संग न कब होता वह साधक संग सदा सुख पावे साध संग बस्त गोचर लय साधु कै संग जर सह साधक संग बसै थान उच्च साधु कै संग मैल पहुंचै साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साधक संग सब कुल उदार है साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है साधु कै संग सो धन पावे जिस धन ते सब को वरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साधक संग सर्व थान गम नानक साधक संग सफल जन्म साधक संग नहीं किचकाल दर्शन भेट तो होत निहाल साधक संग कलोक तहर है साधक संग नरक पर हर है साधक संग यहाँ वहाँ सुला साध संग विचरत हर मेला जो इच्छा है सोई फल पावे साधक संग न बिरथा जावे
पार ब्रह्म सात ऋद वसैनान कुदरा सात सुन वसै सात कसंग सुनो हर नाओ सात संग हर के गुण गाओ साधक संग नमन ते विसरै सात संग सर पर निस्तरै साधक संग लग्या परम मीठा साधु कै संग कट कट डीठा सात संग भय आज्ञाकारी साध संग गत भई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध पिटी संजोग साध की महिमा भेद जाने जिता सुने तिता बख्याने साधक उपमा त्यो गुण ते दूर साधक उपमा रही भरपूर साधक शोभा का ना ही अंतर साधक शोभा सुधा बेअंत साधक शोभा उचते उची साधक शोभा मुचते मुची साधक शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न पाई श्लोक नानक साध प्रभ भेद न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेकै कुछ बिन कोए नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सोख ब्रह्म ज्ञानी कै दृश्य मान जैसे राज रंकोला गै तुल पुवान ब्रह्म ज्ञानी कै तीर जे ज्यो बसदा को खोदै को चंद अलेप ब्रह्म ज्ञानी कै है गुनाऊ नानक ज्यो पाव कर सह सुभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैं न लागे जिला ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास जैसे तारु परे आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सूत्र समान ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उच्च ते उच्चा मन अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पाए नानक जिन प्रव्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा न पाया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाह ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी का हुए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी के कै रंग ब्रह्म ज्ञानी के बसै प्रसंग ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सुध जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी का हुए चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल फल जाई है ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानिया परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन वाहे ब्रह्म ज्ञानी कै कौन जाने ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाकिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बकाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पारु नानक ब्रह्म ज्ञानी कौ सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी साधु जीवै नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुख विदाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगलकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक उर धारै जो अंतर नाम सर्व मैं पेखै भगवान निमक निमक ठाकुर नमस्कार है नानको अपर सगल निस्तार है अष्टपदी मिथिया नाही रसना परसु मन में प्रीत निरंजन दर्शु पर त्र रूप न पिखै नित्र साध की टैल संसंग हेत करना सुने काहू की निंदा सब ते जाने आप उसको मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हरे मन की बासना मन ते टरे इंद्री जित पंच दोख ते रहत नान कोट मध्य को ऐसा परसु बैसनु सोजी सुपर सो प्रसन्न विष्णु की माया ते हुए पिन कर्म करत हुए नहीं कर्म तिस बैसनु का निर्मल धर्म
काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग्रह चय मंत अनंतर सिमरन गोपाल सब उपर होवत कृपाल। आप दृढ़ वृ नाम जपावै नानक कुबै सुन परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग। मंते बिन सगला परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल कोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नित नीत, मंत्र अर्पै विष्ण प्रीत हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नामा तुम्हें सोधै, राम नाम सारस पीवै तिस पंडित का उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो ना आवै, वेद प्राण सिमरत बूझै मूल। सुख मैं जानै स्थूल चौवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, सास न पावै जिन कोय। कर कृपा अंतर उर तारै, पस प्रेत मुग्ध पात्र को तारै, सर्व रू काउ कद नाम, कल्याण रू मंगल गुण गाम, काहू जुगत कित न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान। सो दास दर गए परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी परे, सगल संगत मुदास, ऐसी जुगत नानक राम दास, सो प्रभ की आज्ञा तुम्हें तावे। जीवन मुख सो कहावै, तैसा अर्थ तैसा शोक, सदानंद तै नहीं वियोग, तैसा अमृत तैसी तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरताई साई जुगत, नानक पुर कहिए जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर रख तैसा तिन आओ, आपे करन करावन जो प्रभावै, सोई पुन हो पसरे आप अंतरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मादे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता बिना सदा सदा सदा दया, सिमर सिमर नानक भये निहाल। सलोक उस्तुत करे अनेक जानंत न पार अवार, नानक रचना प्रभ रची बहु विधनक प्रकार, अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट बह तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमै उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपिश्वर होते, कई कोट आत्म ध्यान धारै, कई कोट कवका विचारै, कई कोट नवतन नाम त्यावै, नानक करते कंत न पावै, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अपे गातम निकोर, कई कोट पर दर्व को ही रह, कई कोट पर दुख न करह, कई कोट माया श्रमाहे, कई कोट परदेश ब्रह्माहे, जित जित लाऊ तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट से जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्व पाए, कई कोट पात्र वृक्ष निपजाए, कई कोट पवन पाणी वैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट शशि सूर्य खेतर, कई कोट देव दानविंदर सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूतार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कई कोट राज स्ताम सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरतर शास्त्र, कई कोट कीर्तन सुबंध, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट की चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जग किन्नर पिशाच, कई कोट भूत प्रे शुक्र मृगाच, सब ते नेरा सबूते दूर, नानक आबलिप्त रहा भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म जीवै मरै, कई कोट भोजुनी फिरै, कई कोट बैठे ते ही खाए, कई कोट कालै तक पाए, कई कोट की तनवंत, कई कोट माया मैं चिंत, जय जय पाणा तै तै राखी, नानक सब किछ प्रभ कह हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म में पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिन को मिलो प्रभ विनाश, कई कोट मांग सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिन को हो आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट कहानी अरकंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट हो अवतार, कई जुगत किन्नो विस्तार, कई बार पसरे उपासा, सदा सदा के कंकार, कई कोट की ने वो पात, प्रभते हुए प्रमाय समाता, कंत न जाने कोई आपे आप, नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास,
तिन होवता तुम प्रगास कई कोट तत् के वित्ती सुधा न्यारे को नित्रे कई कोट नाम रस पी वैमर पैसा सद ही जीवे कई कोट नाम गुण गावे तुमरा सुख सह सुमावे अपने जन को साथ साथ सुमारी नान कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रवेक है दूसर नाही कोई नानक तिस बलिहार ने जल थल महल सोए अष्टपदी करण करावन करने जोग जो तिस पावे सोई होग खिन में ताप थप नहारा अंत नहीं किछ पारा वारा हुक्मे धार धर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे उच नीच व्यवहार हुक्मे निकरंग प्रकार कर कर दिखे अपनी वडियाई नानक समय रिहा समाई प्रभावै मानुकत पावै प्रभावै ता पात्र तरावै प्रभावै शास्त्र राखै प्रभावै ता हर गुण पाकै प्रभावै ता पथ तुधारै आप करे अपन विचारै दुहा श्रेय काप स्वामी खेलै विकसे अंतर जामी जो पावै सुकार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै कहु मानुक ते क्या हुए आवै जो तिस पावै सोई करावै इसके हाथ हुई तन सब किछ ले जो तिस पावै सोई करे अन जानत बिखिया मैं रचे जे जानत अपना बचे पर मैं भूला दै दिस्तावै निमक माए चार कुंड फिर आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक तेजन नाम मिले किन मैं नीच कीट गो राज पार ब्रह्म गरीब नवाज जा का दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दा दिस प्रगटावै जा को अपनी करै बख्शीश ता कालिका नगन जगदीश जीव पिंड सब चिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनता बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बल नाही सहाथ करण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जीव जो तिस पावै सोई पंथी कबू ऊंच नीच में बसै कबू सोग हर खरंग हसै कबू निंद चिंद व्यवहार कबू बकास पयाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार कबू नृत्य करै बपात कबू सोए रहे दिन रात कबू माँ क्रोध विकराल कबू सर्व की हो त्रवाल कबू हुए वह बड़ राजा कबू पेकार नीच का साजा कबू कीर्त में आवे कबू पला पला कहावे जो प्रभु राखे ही रहे गुरु प्रसाद नानक सच कहे कबू हुए पंडित करे बख्यान कबू मन धारी लावे ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान कबू कीट हस्त पतंग हुए जी यानक जोन पर मैं परमी या नाना रूप जो स्वागी दिखावे जो प्रभावे तिवे नचावे जो तिज पावे सोई हुए नानक तू जावर न कोए कबहू सा संगत पावे उस स्थान ते बौर न आवे अंतर हुई ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंथन नाम रति करंग सदा वसै पार ब्रह्म के संग ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभु कै सद कुर्बान सलोक सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती हो स्वान जो जाने मैं जोवनवंत सो होवत विष्टा का जंत आपस को करवंत कहावै जन मरै बहुजुन परमावै धन भूमिका जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानकी हां मुक्ता गै सुख पावै धनवंता होय कर गरबावै तृण समान कर संग न जावै बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस पल भीतर ताका होय विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन में होय जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे कुवारी गुर प्रसाद जा का मिटै अभिमान सो जन नानक दर गै परवान कोट कर्म करै हो तारे श्रम पावे सगले बिरथारे अनिक तपस्या करे अहंकार नर सुर फिर अवतार अनिक जतन कर आत्म निद्रव है हर दर गह को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भला ही निकट न आवे सर्व की रेन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ हुए तब इसको सुख ना ही कोए जब जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता
जब तारे कुबेरी मीत तब लगनी चलना ही चीत जब लग मुह मगन संग माय तब लग धर्म राय देश जाय प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे सहज कटे लग कूट तावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनिक भोग विख्या के करे न तृप्त आवे कब कमरे बिना संतोख नहीं कोरा जय सुभ मनोरथ बिरते सुभ का जय नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए करण कराव ने अपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करी तैसा हुए आपे आप रव सोए जो किचकी न सो अपने रंग सब ते दूर सबु कै संग उजे देखे करे विवेक आपे अनेक मरे न बिन सया वै न जाए नानक सद ही रहा सुमाय आप उपदेश समझे आप अपे रचिया सब कै साथ आप किनु अपन विस्तार सब कछ उसका करने हार उसते पिन कहो किच होए थान तनंतरी कैस होए अपने चलताव करने हार कौतुक करे रंग अपार मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वकियानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बानी कट कट सुनी श्रवण बखियानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत सर

बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आर जाकट है, संत कै दुखन जमते नहीं छुट्टे, संत कै दुखन सुख सब जाई, संत कै दुखन नरक में पाई, संत कै दुखन मत हुए मलीन, संत कै दुखन शोभा तेहीन, संत के हथे को रखे न कोए, संत कै दुखन थान भ्रष्ट हुए, संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक पीतरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै, संतन कै दुखन सर्प ज्यों पाय, संत कै दुखन त्रिगत ज्यों किरमाय, संतन कै दुखन तृष्णा में जलै, संत कै दुखन सब को चलै, संत कै दुखन ते सब जाए, संत कै दुखन नीच निचाए, संत दुखी का थाव को नाहे, नानक संत पावै तावे भी गत पाहे, संत का निंदक महात ताई, संत का निंदक किन टिक न पाई, संत का निंदक महात यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखियार दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे ता उसका पी हुए मोख, संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को नान लाग गए, संत के दुखी को सब त्याग गए, संत का दुखी मां अहंकारी, संत का दुखी सदा बेकारी, संत का दुखी जन्म में मरे, संत की दुख ना सुख ते डरे, संत दुखी का संत दुखी को ना ही ठाऊ, नानक संत पावे ता ले मिलाए, संत का दुखी अद बीच ते टूटे, संत का दुखी कितै काज न पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान परमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते थोता, जो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किछ नाही, अपन बीज अपे ही खाही, संत के दुखी कवर न रखन हार, नानक संत पावै ता ले उबार, संत का दुखी यों बिल लाए, संत का दुखी यों बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक इंद्र नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटै केला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी शुद्ध मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो दिस भावै सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिला सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है, संत के दुखी की पुजै नया सा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख न तृष्टा कोई, जैसा भाव है तैसा कोई हुए, पै किरत न मिटै कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभ की उस्तत करो दिन रात, तिसे ते आओ सास की रास, सब कछ वरते तिसका किया, जैसा करे तैसा कुथिया, अपना खेलाब करने हार, दूसर कौन कह विचार, जिसनु कृपा करे तिस आप नाम दे, बड़भागी नानक जन सी। श्लोक तजहु सियानप सुरजन हो, सिमरहु हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पहु जाय। अष्टपदी मानु की टेक बिरथि सब जान, देवन को एक भगवान, जिसकै दिए रह अगाए, बहुर न तृष्णा लग आय, मारे रखे को आप, मानुक कै किछ नाही हाथ,
तिसका हुक्म वो सुख हुए, तिसका नाम रखंठ पुर हुए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक विघ्न लागे कोए। पुस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो। नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग। चरण चलो मार गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानकू जिल मत्था। बड़भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करे विचार, चेतन वंत गणी संसार। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानू ते सुखी। एको एक एक पछाने, इत उत कियो सो जी जाने। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिन्हें निरंजन जानिया। गुर प्रसाद अपन आप सुजे, तिसकी जानो तृष्णा बुझे। सा संग हर हर जस कहत, सर्व रोग देव हर जन रहत। अंदिन कीर्तन केवल बख्यान, गृहस्थ में सोई निर्वाण। एक ऊपर जी जन की आशा, तिसकी कटिया जम की भाषा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक जिसे न लागे दुख। जिसको हर ब्रह्मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे। जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक को किसते डरे। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सी जिया, गुर प्रसाद तत् सबूजिया। जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सुखम सोई स्थूल। न किछ जन्मे न किछ मरे, अपन चलता पही करे। आवन जावन दृष्टन दृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट। आपे आप सगल मैं आप, अनिक जुगत रच थाप थाप। अविनाशी नाही किछ खंड, धारण धारहु ब्रह्मांड। अलख अभे पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप। चिन प्रभ जाता सो सुभावंत, सगल संसार उदरे तिन मंत। प्रभ के सेवक सगल उदारण, प्रभ के सेवक दुख विसारण। आपे मेले कृपाल, गुर का शब्द जब भय निहार। उनकी सेवा सोई लागे, जिसनों कृपा करे बड़बा गय। नाम जब पावे विश्राम, नानक तिन पुरख उत्तम कर्मान। जो किछ करे सुप्रभ कह रंग, सदा सदा बसे प्रहार सांग। सह सुभाए हुए सो हुए, करने हार पछाने सोए। प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिसते उपजे तिस माहि सुमाए, वे सुख निदान उन्हों बने आए। आपस को आप दीनो मानो, नानक प्रभ जन

है। धनवंता हुई क्या को गर्भ है, जा सब किस तिसका दिया दर्भ है, अतसूरा जी को गावे, प्रभु की कला बिना कहता है, जे को हुए वह दातार, तिस देन हार जन गावार, जिस गुरु प्रसाद टूटे हो रोग, नानक सूजन सुदा अरोग, ज्यो मंदिर को थमै थमन, त्यों गुर का शब्द मने स्तमन, ज्यो पाखा नाव चढ़त रहे, प्राणी गुर चरण लगत निस्तर है, ज्यो अंधकार दीपक प्रगाश, गुर दर्शन देख मन हुए बिगास, ज्यो महा ध्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे, तिन संतन की बांछो तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूर्ख का हे बिललाइये, पूर्व लिखे का लिखिया पाइये, दुख सुख प्रभ देवनहार, अवर त्याग तुत सहचतार, जो कछ करे सोई सुखमान, कूला का ही फिरे अजान, कौन बसताई तेरे संग, लपटरे रस लो भी पतंग, राम नाम जप हृदय वाहे, नानक पद सिद्धि कर जाहे, इस वखर को लैण तू आया, राम नाम संतन घर पाया, तज मां लेहो मनमोर, राम नाम हृदय महतोर, लाल खेप संतै संचार, अवर त्याग विख्या जंजाल, तन तन कह सब कोय, मुख उजल हर दर गय हो सोय, इह वापार विरला वापार है, नानक ताके सद बलिहार है, चरण साध के तोय तोय पियो, अर्प साध को अपना जियो, साध की तूर करो स्नान, साध ऊपर जाइये कुर्बान, साध सेवा वडभागी पाइये, साध संग हर कीर्तन गाइये, अनेक विघंते साधु रख है, हर गुण गाय अमृत रस चक है, ओट गई संत है दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया, मृत कौ जीवालनहार, भूखे कौ देवता दार, सर्व निदान जाकी दृष्टि माही, पूर्व लिखे का लहना पाहे, सब किस तिसका करण है जोग, तिस बिन दूसर हुआ न होग, जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब ते ऊच निर्मले करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल दिया, जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रवचीत, भगत पग सुनिए त्यो लोय, जाके हृदय एक होए, सच करनी सता की रहत, सच हृदय सत मुख कहत, साची दृष्ट साचा आकार, सच वरतै साचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता। श्लोक रूप न रेक न रंग किछ, त्रिगुण ते प्रभ भिन्न, किसे बुझाए नानका, जिस होवै सुप्रसानू। अष्टपदी अबनासी प्रभ मन मै राख, मानु की तू प्रीत त्याग, तिस्ते परै नाही किच हो कोए, सर्व निरंतर एको सोए, आपे बीना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निदान दयाल बख्शंद, साध तेरे की चरणी पाओ, नानक कै मन इहो अनुराओ, मनसा जो पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग, हरण भरण जाका नेत्र फूर, तिसका मंत्र न जाने होर, अनद रूप मंगल सद जाके, सर्व थोक सुनी है करता कै,

तप महत पीसर गृष्ट में भोगी त्याए त्याए भगत सुख पाया नान तिस गुरु का किनंत न पाया जाकी लीला कीमित नाही सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जान पूत सगल पुरोई अपने सूत समत ज्ञान ध्यान जंदे जिंदास नाम त्यावै से त्यो गुण मैं जाको परमाहे जन्म रह फिर आवै जाए ऊच नीच तिसके स्थान जैसा जनावै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करै करंग नाना बिद किनो विस्तार प्रभ विनाशी एकंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर्ण पूरे हो सब ठाए नाना बिद कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवै नानक हर नाओ नाम की तारी सगले जंत नाम की तारी खंड ब्रह्मांड नाम की तारी सिमृत वेद पुराण नाम की तारी सुनन ज्ञान ध्यान नाम की तारी आकाश पाताल नाम की तारी सगल आकार नाम की तारी पुरिया सब पवन नाम के संग उदरे सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाई नानक चौथे पद में सूजन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समानी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरु ते पाए सत वचन सत उपदेश सत ते जन जा कर दे प्रवेश सत निरत बूझे जे कोए नाम जपत ताकी गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सिरसु करने हार अवर न बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योत स्वभाव है सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पहे बिस्मार जिन बुझिया तिसाया स्वाद प्रभु कै रंग राज जन रहे गुरु कै वचन पदार्थ लहे हुए दाते दुख कट नहार जा कै संग तरै संसार जन का सेवक सोवड भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत्यावनहार आप सत सत सब धारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभुक्ता सुरत सत सत सुनता बुजनहार को सत सब हुए नानक सत सत प्रभु सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया जा कर हृदय विश्वास प्रव्याया तत् ज्ञान मन प्रगटाया पै ते निरपौ हुए बसाना जिसते उपजिया तिस माए समाना बस्त माहे ले बस्त गडाई ताको भिन्न न कहना जाय बुझ है बुझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत
ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकुर को सेवक जान संग, प्रभु का सेवक नाम के रंग।

नानक सो सेवक साथ साथ सुमार है, अपने जनका पर दाटक है, अपने सेवक की सर पर रख है, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपद रख है, ताकि गत मित कोई न लख है, प्रभ के सेवक को न पहुंचे, प्रभ के सेवक उचते उचे, जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दा दिस प्रगटाया, नीकी कीरी मैं कल रख है, भस्म करे लश्कर कोट लख है, जिसका सास न काट ताप, ताकू राखत दिख रहात, मानस जतन करत बहु भात, तिसके करत बिरते जात, मारन रखे अवर न कोई, सर्व जिया का रखा सोए, काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडानी, बार बार बार प्रभ जपिए, पी अमृत इह मन तंत्र पिए, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किच अवर नाही दृष्टाया, नाम धन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम कर संग, नाम रस जो जन तृप्तानि, मंत नामे नाम सुमानि, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सुध काम, बोलो जस जेबा दिन रात, प्रभ अपने जन की नीदात, करै भगता तुम कह चाहे, प्रभ अपने सो रह सुमाए, जो हुआ होत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पहचाने, तिसकी महिमा कौन बखानू, तिसका गुण कैक न जानू, आठ पहर प्रभ सह हजूरे, कहो नानक से जन पूरे, मन मेरे तिनकी ओट लेहे, मन तने अपना तिन जन देहे, जिन जने अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्स सब पाप मिटावे, अवर स्यानप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। श्लोक सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाऊ, तिसके संग सिखुद रह नानक, हर गुण गावस्पदी, सतगुर सिखी करै प्रतपाल, सेवक गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै, सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी हे, सतगुर सिख का हलत पल सुवारै, नानक सतगुर सिखा ओ जी नाल सुमारै, गुर कै ग्रह सेवक जो रहै, गुर की आज्ञा मन मैं सहै, आपस कहो कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सत्यावै, मन बिचै सतगुर कै पास, तिस सेवक के कार्य रास, सेवा करत होए निकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेव गुर की मतले, बीस बिस्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ, अनेक बार गुर को बल जाओ, सर्व निदान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म मैं जन जन मैं पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ परम, सह सियान पुलया न जाइए, नानक ऐसा गुरु बड़ भागी पाइये, सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत, पेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दर गय गवे, सुनकर बचन करण आघाने, मन संतो गातम पतियाने, पूरा गुर अखियो जा का मंत्र, अमृत दृष्ट पे कह हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भाव है तिस लय मिलाए।
जीवा एक उस्तत अनेक सतपुरख पूर्ण विवेक काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनिक भगत बंदन नित कर है चरण कमल हृदय सिमर है सद बलिहारी सतगुरे अपने नानक जिस पर साधु वैसा प्रभ जपने इहो हर रस पावे जन कुए अमृत पीवे अमृत सोए उस पुरखा नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेशे को दे मोह माया के संग न लेप मन में राखे हर हर एक अंधकार दीपक परगासी नानक परमो दुख तैती नासी तब तुम्हारी ठाट वरताई अनंत भया दुख ना ठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे पौ चुका निर्भो हुए बसे सगल ब्याद मन ते खै नसी जिसका साथ इन कृपा

सुन नानक हर हर जस श्रवण निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला तार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर एको सोय ओत पोत रव्या रूप रंग पय प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन भजन बिख्या सगली चार हर हर नाम कुमावना नानक इहो धन सार अष्टपदी संत जना मिल कर हो विचार एक सिमर नाम आधार अवरो पाव समीत विसार हो चरण कमल में उतारो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वत हे तन संचो हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आसरा खो मन वाहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंट उठता वै सो तन हर सेवा ते पाव है जिस सुख नित बाछ मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करह भली करनी सा शोभा पज हर की सरनी अनिक पावी रोग न जाए रोग मिटे हर औखद लाए सर्व निदान में हर नाम निदान जप दर गए जप नानक दर गए परवान मन प्रभु तो हर कहनाए दै जिस तावता बैठाए ताको बिघन न लागे कोई जाके हृदय बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पौ बिन से पूर्ण हुए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बसे अविनाशी कहो नानक काटी जमपासी तत विचार कह जन साचा जन्म मरै सो काचू काचा आवा

सुत मीत कुटंब बनता इनते कहो तुम कवन सुनाता राज रंगमाया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार असहस्ती रथ सवारी झूठा डंफ झूठ पा सारी जिन दिए तिस बुझे न बिगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मातू ले याने भगत बिना बहु डूबे सियानी हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल विक जाहे आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत कैत रहत गत पावो सार भूषत हर को नाओ सह सुभाए नान गुण गाओ गुण गाव तेरी उत्तर समय बिन सजाए हूं मैं बिख फैल हुए चिंत बसै सुख नाल सास ग्रासर नाम संभाल छाड़ सियान सगली मना सास पावे सच तना हर पूंजी संच करो बिहार इहां सुख दर गै जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सालाहे एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मंत्र जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूरे हो प्रव्याप अनेक विस्तार एक दे पय एक अरात प्राचत गए मंतन अंतर एक प्रभ राता गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तौ शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन

भूत के संकमात, इसका वर्ण चिन्ह न जापत, हरख शोक तब हरख शोक को किसे व्यापत। जब अपने आप अपार ब्रह्म, जब अपन आप अपार ब्रह्म, तब मुह कहा किस होवत भरम, अपन खेला वर्ती जा, नान करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुक्त को किसको गणी। जब एक हरगम पारु, तब नरक सुर्ग कहो कौन उतारु। जब निर्गुण प्रभ से सुभाई, तब शिव शक्त कहो कित ठाई। जब आप अपनी ज्योतर है, तब कवन निडर कवन कत डरे। अपन चलताप करने हार, नानक ठाकुर अगम पार। अविनाशी सुख अपनासन, तह जन्म मरण को कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जमकी त्रास कहो किचोए। जब अभिगत गोचर प्रभेका, तब चित्र गुप्त किच पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर गादे, तब कौन चुट्टे कौन बंधन बाधे। अपना पापी चर जा, नानक अपन रूप आपी उपर जा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण, तय कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश, तय छल छिद्र लिगत को कीस। तय छल छिद्र लगत को कीस, जय ज्योत स्वरूपी जो संसमावे। तय किसे पूकवन तृप्तावे, कर्ण करावन करने हार। नानक करते का नाहीं सुमार, जब अपनी शुभ अपन संग बनाई। तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कलाया पै परवीन, जय सर्व कलाया पै परवीन, तय भेद कतिव कहा को चीन। जब अपना पाप उतार है, तो सगन अपसगन कहा विचार है। तय तो सगन अपसगन कहा विचार है, जय अपन ऊंचा अपन आप नीरा। तय कौन ठाकुर कौन कही अचीरा, बिस्मन बिस्म पहे रहे बिस्मात। बिस्म बिन बिस्मन बिस्म रहे बिस्मात, नानक अपनी गत जान हुआ। जय अचल अचेद अपेत समाया, उहां किसे व्यापत माया। पुष्पु अपै आदेश, त्यों गुण का ना ही प्रवेश। जय कह एक एक भगवंता, तय कौन अचिंत किस लागै चिंता। जय अपन आपा पतियारा, तय कौन कतै कौन सुन नेहारा। बहु बेंतूच ते उच्चा, नानक पुष्पु अपै पहुंचा। जय आवृत्यो प्रपंच कार, त्यो गुण में किन्नो विस्तार। पापुन तय पै कहावत, को नर को सुर्ग बंचावत। आल जाल माया जिन जाल, हों मैं मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान, प्रकार की उपज्ञान। अपन अकेला कर देखे, खेल संकुचै तो नानक कह। जय विगत भगत आव, जय पिसरे पासार संत प्रताप। धूप आका आपे तनी, उनकी शोभा अनु बनी। आपे कौतुक करे आनंद चूज, आपे रस भोगन निरजोग। जिस भावे तिस अपना इलावे, जिस भावे तिस खेल खिलावे। बेशुमार था गंते तोले, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। सलोक जी जंत के ठाकुरा, आपे वर्तनहार। नानक को फसरिया, दूजा कह दृष्टा राष्ट्रपति। आप कथे आप सुनने हार, आपे एका विस्तार। जात स्पावे ता सृष्ट उपाय, अपने पाने ले समाय। तुम ते पिन नहीं किछ होए, अपन सुसब जगत पुरोए। जाको प्रभ जीवा बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत् का बेता, नानक सगल सृष्ट का जेता। जी जंतर सबता के हाथ, दीन दयाल नाथ को नाथ। जिस राखे तिस कोय न मारे, सो मुआ जिस मनो विसार है। तिस तजवर कहाँ को जाए, सब श्री एक निरंजन राय। जी की जुगत जाके सभात, अंतर बाहर जानो साथ। गुण निदान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलिहार। पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल। अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जामी रहो व्याप। प्रतपाल जीन भोपात, जो चुर चु सो तिसहत्यात। जिस भाव है तिसलय मिलाए, भगत करे हर के गुण गायन। मन अंतर विश्वास कर मानिया, करना नानक के जानिया।
जन लागा हरे कह नाए, तिसकी आस न वृत्ति जाए। सेवक को सेवा बने आई, हुकम बूझ परम पद पाई। इसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार। बंधन तोर पै निर्वैर, दिन पूजय गुर के पैर। ये लोक सुखी परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ्या पह मेले। साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो परमानंद। राम नाम सत करो विचार, दुर्लभ देखा करो उदार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तन कह सुहाओ। आठ पैर प्रभन पे को नीरा, मिटे ज्ञान बिन से अंधेरा। सुनो पदे सिर दै बसाओ, मन चि नान खोल पाओ। हालत पलत दुले हुस्वार, राम नाम मंत्र उतार। पूरे गुरु की पूरी दिखिया, जिस मन बसै ते साच बिरिखिया। मंत्र नाम जे पोले उलाए, दूह तल मन ते पौ जाए। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगने में केप तुम्हारी। एक काटे रखो मन माए, नानक बौर न आवै जाए। तिस्ते दूर कहा को जाए, उबरै रख नहार त्याए। निर्भउ जपै सगल भउ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै। जिस प्रभ राखै तिस नाहीं दूख, नाम जपत मन होवत सूख। चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस जन को कोय न पहुँचन हार। सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताकी कारज पूरा। मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेख तुदर श्रेष्ठ। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान। जिस मन बसै सोहोत निहार, ताके निकट न आवत काल। अमर पय अमरा पद पाया, सा संग नानक हर त्याया। श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन प्रगास अष्टपदी। संत संग अंतर प्रगटीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समग्री एक स्कट माहे, अनेक रंग नाना दृष्टाए। नौ निद अमृत प्रभु का नाम, देही महेश का विश्राम। सुन समाधान तैनात, कह न जाई चर विस्मा। तिन देखे साफ दिखाए, नानक ते जन सो जी पाए। सो अंतर सो बार अनंत, घट घट व्याप रहा भगवंत। तरन माया आकाश पयाल, सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल। बन तिन प्रभु तै पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौन पानी बैसन तरमाहे, चार कुंड दिशे समाहे। तिस्ते भिन्न नहीं कोठाओ, गुरु प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद प्राण सिमृत मैं देख, ससे सुन खेत्र मैं एक। पानी प्रभु की सब को बोले, आप डोल कबू डोले। सर्व कला कर खिला खेल, मोल न पाई अपने मोल। सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, तारो स्वामी उत्पोत। गुरु प्रसाद परम का नास, नानक तिन में हो विसास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म। संत जना सुने सुब बचन, सर्व व्यापी राम संग्रचन। जिन जाता तिसकी रह, सत बचन साधु सब कैत। जो जो हो सोई सुख मान, कर्ण करावन हार प्रभु जाने। अंतर बसे बाहर पियो, नानक दर्शन देख सम्मोहि। आप सत किया सब सत, तिस प्रभु ते सगली उत्पत। तिस भावै ता करे विस्तार, तिस भावै ता एक अंकार। अनिकला लखी न जाय, जिस भावै तिस लय मिलाय। कवट कट कवट कही है दूर, आपे आपा भरपूर। अंतर गज साफ जनाए, नानक ते जनिया बुझाए। सर पूता वरतारा, सब नैना पेखनहारा। सगल समग्री जा का तन, आपन जसा पी सुना। आवन जाने खेल बनाया, क्या कार्य की निमाया। सब कह मदलिप तो रह, चुक कहना सो आपे कहे। आग्ञा आवे आग्ञा जाए, नानक जापा वै तन ले समायस्ते हुए। सुना ही बुराव रह, कहो किने कछ करा। भला कर तू ततनी किया, पे जाने अपने जी की। आप सरधारी सब साच, उत पुत अपन संग्राज। ताकि गत मित कही न जाए, दूसर होए ता सोजी पाए। तिसका किया सब प्रवान, गुर प्रसाद नानक जान। जो जाने ते सदा सुख होए, आप मिलाए ले प्रभ सोयो। तनवंत कुलवंत बतवंत, जीवन मुख जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जग तराया। जन आवन कहे है सुहाओ, जन कह सिंह चित आवै नाओ। जन कै संग चित आवै नाओ, आप मुक्त मुक्त करै संसार। नानक तिस जन कौ सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जाका नाओ। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ अष्टपदी।
पूरे गुरु का सुनो उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे छिंद। आस नित्या गुतरंग संजना की तूर, मन मांगाव चोट बेनती करो, सा संग गगन सागर तरहु, हर तन के परले हो भंडार। नानक गुरु पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद, नरक निवार उदारो जीव, गुण गोविंद अमृत रस पियो, चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग ने, गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के वचन अमलिक लाले, रतन सुनत कमावत होत उदार, आप तरह लोक कह निस्तार, सबल जीवन सबलता का संग, जा के मन लागा रंग। जय जय शब्दन आहद वाजय, सुन सुन दिखरी प्रभु गाजय, प्रगटे गोपाल महंत कै माथे, नानक कुदरे थिन कै साथे, शरण जोग सुन शरणी आए, कर कृपा प्रभाव मिलाए, मिट गए बैर भय सबरी, नमृत नाम साध संग लैन, सो प्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण हुई सेव की सेवा, जल बिगार तेरे राम नाम सुन रतना कहते, कर प्रसाद दया प्रवतारी, नानक निभि खेप हमारी, प्रभ की उस्तुत करो संत मीत, सावधानी कागर चीत, सुख मनि सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बस होत निदान, सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए, प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए, सब ते उच पाए स्थान, बहुर न होवे अवन जान, हर तन काट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए, खेम शांत रिद नव निध, बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रगा, सब कैवल सगल त्रिदा, सुंदर चतुर तत् का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता, ये फल किस जन कै मुख भनी, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, एहो निदान जपै मन कोए, सब जुग मैता की गत होए, गुण गोबिंद नाम तुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध सासंग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुट्टै, जाके मस्त कर्म प्रपाए, साध सर नानक ते आए, जिस मन बसै सुने लाए प्रीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत, जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुर्लभ दे तत्काल उधारै, निर्मल शोभा अमृता की बानी, एक नामन माहिष मानी, दुख रोग विनसे पै परमु, साध नाम निर्मलता के कर्मु, सब ते उचित।

सुखमणि सुखमणि सुखमृत प्रवना भगत जना के मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार सहस स्याणपां लख होहे तां इक न चलै नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेखो दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बखसीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जी बुझै ता हमें कहे ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निशान गावै को गुण वडियाइया चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तनखे गावै को जी लै फिर दे गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथीना आवै तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंत्र खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे परवाहो साचा साहिब साच नाए पाखिया पाओ अपार अख है मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिए जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिए सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेवया तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हों जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देहे बुझाई सब न जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जेते सुपावा विण पाने के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे तेहा कोई ना सूझै जे तिस गुण कोई करे सुना है सिद्ध पीर सुरनाथ सुना है धरत तवल आकाश सुना है दीप लो पाताल सुना है पोहे न सकै काल नानक भगता सदा विगास सुना है दुख पाप का नाश सुना है ईसर ब्रह्मा इंद सुना है मुख साला हनुमंद सुना है जोग जुगत तान भेद सुना है सासत सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास सुना है दुख पाप का नाश सुना है सात संतोख ज्ञान सुना है आठ साठ का स्नान सुना है पढ़ पढ़ पावै मान सुना है लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुना है दुख पाप का नाश सुना है सारा गुणा के गाह सुना है सेख पीर पात साह सुना है अंधे पावै राह
सुनै हाथ होवै असगाह नानक भगतां सदा विगास सुनै दुख पाप का नास मन्ने की गत कही न जाए जे को कह पिछै पछुताए कागद कलम ना लिखण हार मन्ने का बह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध मन्नै सगल भगण की सुध मन्नै मोहे चोटा ना खाए मन्नै जम कै सास न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्नै मार्ग ठाक न पाए मन्नै पत सिउ प्रगट जाए मन्नै मग न चलै पंथ मन्नै धर्म से तीसन बंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्नै पावै मुख द्वार मन्नै परवारै साधार मन्नै तारै तारी गुर सिख मन्नै नानक पावै ना भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावै दरगह मान पंचा सोहै दार राजान पंचा का गुर एक ध्यान जे को कहै करै विचार करते कै करनै नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार तबलै उपर किता पार धरती होर पर होर होर तिसते भार तलै कवण जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सुवाले हो रूप केती दात जाने कौन पूत कीता पसाओ एको कवाओ तिसते होए लख दरियाओ कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन राहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह भख सार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंधकोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक सिर कर है पार नानक नीच कहै विचार वारिया ना जावा एक वार ज्यो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख काहे हे सिर भार होए अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन ए लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए तिव तिव पाहे जेता कीता तेता नाओ विण नावै नाही को थाओ कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार भरियै हाथ पैर तन देह पानी धोता है उतर सोखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइए ओह धोए भरियै मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुनी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवा हो जाहो तीरथ तप दया दत दान जे को पावै तिलका मान सुनया मन्या मन कीता पाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए वैण गुण कीते भगत न होए सुअस्त आस बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवण सो वेला वक्त कवण कवण थेत कवण वार कवण से रुत्ती माह कवण जित हुआ आकार
वेल ना पाईया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त ना पायो कादिया जे लिखन लेख पुराण थित वार ना जोगी जाने रुत माह ना कोई जा करता सिर ठीकौ साजे आपे जाने सोई केव करे आखा केव सालाही क्यों वरने केव जाना नानक आखण सब को आखै एक दो एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का होवै नानक जी को आपो जाने अगै गया ना सोहै पाताला पाताल लाखो आगास आगास ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एक वात सहस अठारह कहन कतिबा असुलो एक धात लिखा होए ता लिखिए लिखै होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप सालाही सालाहे एती सुरत ना पाईया नदियां अतै वाह पवै है समुंद ना जानिए समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल ना होवनी जेत समन होना विसरा है अंत ना सिफती कहन ना अंत अंत ना करना है देन ना अंत अंत ना वेखण सुन ना अंत अंत ना जापै क्या मन मंत अंत ना जापै कीता आकार अंत ना जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत ना जाने कोए बहुता कही है बहुता होए वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ हे वड ऊंचा हो वै कोए तिस ऊंचे को जाने सोए जे वड आप जाने आप नानक नगरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए किते मंगा जोद अपार किते अगणत नहीं विचार किते खप तुटै वेकार किते लै लै मुकर पाहे किते मूर्ख खाही खाहे किते आ दुख भूख साद मार ए पे दात तेरी दातार बंद खलासी भाण होए होर आख ना सकै कोए जे को खाए को आखण पाए ओह जाने जेतिया मुहे खाए आपे जाने आपे दे आख है से पे केई के जिसनु बखसे सिफत साला नानक पात साही पात साहू अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल भंडार अमुल आवै अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीबाण अमुल तुल अमुल परवान अमुल बखसीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुलो अमुल आखिया न जाए आख आख रहे लिव लाए आख वेद पाठ पुराण आख पढ़ै करे वख्याण आख है बरमे आख है इंद आख है गोपी तै गोविंद आख है ईसर आख है सिद आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नार मुन जन सेव केते आख है आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे केते कीते होर करे ता आख न सका है केई के जेवड़ भावै तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखै बोल विगाड़ ता लिखिए सिर गावारा गावार सो दर के हा सो कर के हा जित बह सर्ब समाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण हारे केते राग परी स्यों कहियन केते गावण हारे गावह तुहनो पौन पाणी बह संतर गावह राजा धर्म द्वारे गावह चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावह ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सुवारे गावह इंद इंदासन बैठे देवत्यां दर नाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मश पयाले गावन रतन उपाए तेरे आठ साठ तीर्थ नाले गावह जूद महाबल सूरा गावह खाणी चारे गावह खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तहारे से तुदनो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे
सोई सोई सदा साचो साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव ते सदी वडियाई जो तिस भावै सोई कर सी हुकम न करना जाई सो पात साहौ साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पात झोली ध्यान की कर है बेभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकु वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग विजोग दोए कार चला वह लिखे वह भाग आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तीन चेले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओ वेखै उना नदर न आवै बहुता एहो विडान आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एकावार कर कर वेखै सिर जनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी बौ लख हो हे लख हो वै लख वीस लख लख गेड़ा आखिया एक नाम जगदीश ए तराहे पत पवड़ियां चढ़िया होए अकीस सुन गलां आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देन ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राज माल मनसूर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पाणी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निसान कच पकाई ओथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाट घड़ियै रूप रंग के वेस केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेस केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात निरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद बिनोद कूड आनंद सर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाट घड़िय बहुत अनूप

اچان جو ہیں، اچو جو ہیں، اچان جو ہیں، امیق ہیں، رفیق ہیں، اتند ہیں، ابند ہیں، نربوج ہیں، اسوج ہیں، اکال ہیں، اجال ہیں، اللہ ہیں، اجا ہیں، اننت ہیں، مہنت ہیں، علیق ہیں، نرسریق ہیں، نرلمب ہیں، اسمب ہیں، اگم ہیں، اجم ہیں، اپوت ہیں، اشوت ہیں، الوک ہیں، اشوک ہیں، اکرم ہیں، اپرم ہیں، اجیت ہیں، اپیت ہیں، ابا ہیں، اگاہ ہیں، امان ہیں، ندھان ہیں، انیک ہیں، پھر ایک ہیں، پوجنگ پریاس چند نمو سربمانے سمستی ندھانے نمو دیو دیوے اپیکھی اپیوے نمو کال کالے نمو سرب پالے نمو سرب گونے نمو سرب پہنے انگی اناتھے نرسنگی پرماتھے نمو پان پانے نمو مان مانے نمو چندر چندرے نمو پان پانے نمو گیت گیتے نمو تان تانے نمو نرت نرتے نمو ناد نادے نمو پان پانے نمو باد بادے انگی انامے سمستی سروپے پرپنگی پرماتھے سمستی بےبوتے کلنکنگ بنانے کلنکی سروپے نمو راج رجوے شورنگ پرم روپے نمو جوگ جگوے سورنگ پرم سدھے نمو راج رجوے شورنگ پرم بردے نمو ساستر پانے نمو آستر مانے نمو پرم گیاتا نمو لوک ماتا اپیکھی اپرمی اپوگی اپوگتے نمو جوگ جگ وے سورنگ پرم جگتے نمو نیت نارائنے کرور کرمے نمو پریت اپریت دیوے سدھرمے نمو روگ ہرتا نمو راگ روپے نمو ساہ ساہ نمو پوہ پوپے نمو دان دانے نمو مان مانے نمو روگ روگے نمستنگ سنانگ نمو منتر منترنگ نمو جنتر جنترنگ نمو ایشٹ ایشٹے نمو تانتر تانترنگ سدا سچدانند سربنگ پرناسی انوپے اروپے سمستو نیواسی سدا سید دا بدھ دا برد کرتا ادو ارد اردھنگ اگنگ اوگ ہرتا پرنگ پرم پرمیشورنگ پروش پالنگ سدا سربدا سید داتا دیالنگ اشیدی اپیدی نامنگ اکامنگ سمستو پراجی سمست استدامنگ تیرا جور چاچری شند جلے ہیں تھلے ہیں اپیت ہیں اپے ہیں پربھو ہیں اجو ہیں آدیس ہیں اپیس ہیں پجنگ پریات شند اگادے آبادے انندی سروپے نمو سرب مانے سمستی ندھانے نمستمنگ نرناتے نمستمنگ پرماتے نمستمنگ اگنجے نمستمنگ اپنجے نمستمنگ اکالے نمستمنگ اپالے نمو سرب دیسے نمو سرب پیسے نمو راج راجے نمو ساج ساجے نمو ساہ ساہے نمو ماہ ماہے نمو گیت گیتے نمو پریت پریتے نمو روک روکے نمو شوک شوکے نمو سرب روگے نمو سرب بھوگے نمو سرب جیتنگ نمو سرب ہیتنگ نمو سرب گیانگ نمو پرمتانگ نمو سرب منترنگ نمو سرب جنترنگ نمو سرب درسنگ نمو سرب گرسنگ نمو سرب رنگے ترپنگی اننگے نمو جیو جیونگ نمو بیج بیجے اکھجے اپجے سمستنگ پرسجے کرپالنگ سروپے کو کرمنگ پرناسی سدا سرب دارد سدنگ نواسی چرپٹ شاند توا پرساد امرت کرمے امرت ترمے اکھل جوگے اچل پوگے اچل راجے اٹل ساجے اکھل ترمنگ الاکھ کرمنگ سربنگ داتا سربنگ گیاتا سربنگ پانے سربنگ مانے سربنگ پرانگ سربنگ ترانگ سربنگ پگتا سربنگ جگتا سربنگ دیونگ سربنگ پیونگ سربنگ کالے سربنگ پالے روال شاند توا پرساد آد روپ اناد مورت اجون پورک اپار سرب مان ترمان دیو اپیو آد ادار سرب پالک سرب کالک سرب کو پون کال یتر تتر براج ہی اوتوت روپ رسال نام ٹھامنا جات جاکر روپ رنگ نہ ریکھ آد پورک ادار مورت اجون آد اشیخ دیس اور نہ پیس جاکر روپ ریکھ نہ راگ یتر تتر دسا وسا ہوئے پھیلو انوراگ نام کام بہین پیکت تام ہوں نہ جاہے سرب مان سربتر مان سدائب مان تتاہے ایک مورت انیک درسن کین روپ انیک کھیل کھیل آکھیل کھیلن انت کو پھر ایک دیو پیو نہ جانہی جہ بید اور کتیب روپ رنگ نہ جات پات سو جانہی کہ جیب تات مات نہ جات جاکر جنم مرن بہین چکر بکر پھر چتر چک مانئی پورتین لوک چودہ کے بکھے جگ جاپ ہی جہ جاپ آد دیو اناد مورت تھاپے او سب جہ تھاپ پرم روپ پونیت مورت پورن پورک اپار سرب بسو رچیو سویمبھو گڑن پنجن ہار کال ہین کلا سنجوگت اکال پورک ادیس ترم تامسو پرم رہت اپوت الکھ اپیس انگ راگ ن رنگ جاک جات پات نام گرب گنجن دوشت پنجن مکت دائک کام
आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्प भंजन आद रूप असूत अंग हीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रात पार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख सर्वशास्त्र न जानहि जेहि रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत पाखत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवहि वह चित मधुभार छंद त्व प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस दिन अनास आ जान बाहु साहान साहौ राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनुभूत अंग अपा अपंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम नृपय निकाम अत दूत प्रचंड मित गत अखंड आलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ़ अंड अंड बाढ़ चाचरी छंद त्व प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे कुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र पारती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्य चतर चक्र दान्य चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रथिस अधीस अदृश्य अकृश्य भगवती छंद त्व प्रसाद कथते के अशेज देस है के अभेज भेस है के अगंज कर्म है के अपंज भरम है के अभेज लुक है के आदित सुख है के अवतूत वर्ण है के बेभूत कर्ण है के राजम प्रभा है के धर्मंग तुजा है के अशोक वर्ण है के सर्वा अवर्ण है के जगतंग कृति है के शत्रंग क्षत्रि है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपाओ अनुप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बहीने के एक अधीन के रोजी रजा कर ही मेरे हक है के पाक बेअब है के गैबुल गैब है के अफुल गुनाह है के साहन साह है के कारण कुनेद है के रोजी दहेंद है के राजक रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलिमे के परमं फहिमे के आकल अलामे के साहिबो कलामे के हुसनल वजू है तमामुल रजू है हमें सुल सलामे सलीखत मुदामे गनीमुल सिकस्त है ग्रीबुल परसत है बिलंदुल मकान है जमीनल जमान है तमीजुल तमामे रजूअल निधान है हरीफल अजीमे रजायक यकीन है अनेकुल तरंग है अपेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रपुक्त प्रभा है सुजुक्त सुदा है सदैवं स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है उवंग आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गंग त्रिबादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्व पागे सुसर्वा अनुरागे त्रिभुवत स्वरूप है अशेज है अशूत है के नरकं प्रणाश है पृथ्वी प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विभुगत स्वरूप है परजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है परजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपरम है अकर्म है अनाद है जुगाद है
अजाय है, अभय है, अपूत है, अतूत है, अनाश है, उदास है, अतंध है, अबंध है, अपगत है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलेख है, अदेख है, अलेख है, अपेख है, अटा है, अगा है, असंभ है, अगम्ब है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, आजाद है, चरपट शांतो अप्रसाद, सर्वंहंता, सर्वंगंता, सर्वंख्याता, सर्वंज्ञाता, सर्वंहर्ता, सर्वंकर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं प्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं तर्मं, सर्वं युक्ता, सर्वं मुक्ता, रसावल शांतो अप्रसाद, नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूप निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रय न पुत्रय न सत्रय न मित्रय न ताताय न माताय न जाताय न पाताय नृसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांतो त्वा प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमें सो सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसन चराग हैं के कामल करीम हैं के राजक रहीम हैं के रोजी देहंद हैं के राजक रहंद हैं क्रीमल कमाल हैं के हुसन जमाल हैं गनीमल खिराज हैं ग्रीबुल निवाज हैं हरीफुल शिकन हैं हरासुल फिकन हैं कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाइक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है की नरकुं प्रणास है बहस्तुल निवास है के सरबुल गुवन है हमेशुल उर्वन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परं परम ईश है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीन अलजमा है अमीकुल इमा है क्रीमुल कमाल है कि जोरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि अमितो सुबास है कि अजब स्वरूप है कि अमितो विभूत है कि अमितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि अमितो अपंग है मदभार शांत अप्रसाद मुनमन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुपव अनास मुनमन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनशेज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुपव अनास त्रित तर तुरास आजान बाहो एक सदा हो ओंकार आदो कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अन शेज गात आज जिना बात अन झंझ गात अन रंज बात अन टट भंडार अन ठट अपार अडीठ धर्म आत ठीठ कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बुर मना शांत तो प्रसाद करुणालय है रुकालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वोभारण है त्रित के तरण है जग के कारण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपाश है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम्बर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कालखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है आकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है तरणी त्रित है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नरनायक है खालकायक है विश्वम्बर है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है भाव भंजन है अरिगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राजे राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसंग तामसंग सांत रूपे नमो परम तत्ंग अतत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते
कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अश्री शांद अजय अलय अपह अभय अभू अजू अनास अकास अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अटह अनाथे प्रमाथे अजूनी अमूनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात शंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग बेभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग बेभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमल पुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेभूते गजायब गनीमे हरियं करियं करीमल रहीमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते सुयं भव सुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते सुयं भव सुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसमी तुआ प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरियो कर जोग जति के सुर सुरार दन सुध सुधा देख संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखिए तो प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा होते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पाउन के गौन कौ जात निवारे भारी पूजान के भूप भली बिद न्यावत शीस न जात बिचारे एते पहे तो कहां पहे पूपतो अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिरा सब देश दिसान को बांजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत पवेख पवान के भूपत कौन गाना नहीं जात बिचारे श्री पात श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के ताम सुधारे तीरथ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेव कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जात तार सबै सो विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है सुध सिपा दुरंत दुबा सु साज सना दुर्जान दलेंगे पारी गुमान परे मन मैं कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तुर अरीर मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अब चारे सार की तार पछैया तुरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बात नहीं चक जार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जा चुक अनेक सो एक देवैया दान वदेव फनिंदन साचर भूत पवेख पवान जपेंगे जीव जित जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप तपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सवै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजातिक दान अनेक सुअंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे जी नर श्री पत के प्रस है पाग ते नर फेरना देह तरेंगे कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नाहत फिरियो लिए सात समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन लेहो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज धरियो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो
काहू लख्यो हर आवाची दिशा मैं काहू पशा कौ शीस ने वायो कौ बुतान कौ पूजत है पाश कौ मृतान कौ पूजन तहायो कूर किरिया और ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कौ बुतान कौ पूजत है पाश कौ मृतान कौ पूजन तायो कूर किरिया और ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवि उबाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दय रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावो आप हाथ दय मुहे बचावो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दय करिए सब बैरन को आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम है शाड कोई अवर ना त्याऊ जो बर चाहूं सु तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दय मुझे उबरिया है मरण काल का त्रास निवरिया है हु जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तो जजु करे हो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दशकंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दायत जचन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बाद कियो घट घट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै जब उद करक करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब अकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभव ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूड काश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पहयो राव कही पूपा अंडज जेरज से तज कीनी उत पूज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सुयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबारो असिख संगरो दोष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण कहता जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दोष्ट दुखत हवे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आय है ताकि काल निकट न आय है रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताकि ताप तनक मोह हरे हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह स्वय सकै न कोई
एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारू कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दै लेहो उबारी सर्व ठाउर मोहो सहाई दुष्ट दुख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता केले बेख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता श्री असतुज जब पए दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत् काला मन बांशत फल पावै सोई दुख न तिसै ब्यापत कोई अड़िल सुने गुंग जो जाहे सुरस न पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकट न तिन नरके रह हो जो याकी एक बार चौपाई को कहै चौपाई संबत सत्रह सहस पणि जय अर्ध सहस फुन तीन कही जय भाद्रव सुदी अष्टमी रविवार तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा सुइया पाए रहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम कुरान कुरान अनेक कहे मत एक ना माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ सब तुहे बखाने ओ दोहरा सगल द्वार को छाड़ कह गहे ओ तुहारु द्वार बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार सगल द्वार को छाड़ कह गहे ओ तुहारु द्वार बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह रामकली मोहल्ला तीजा आनंद एको ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्द ता गावहो हरि केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान कीता गुरु बिटहो जिस दियां ए वडियाईयां कहे नानक सुनहो संतोहो शब्द तरहो प्यारू साचा नाम मेरा आधारू वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वासु कीते काल कंट कुमारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कहो से नाम हर कै लागे कहे नानक तय सुख हुआ तित घर अनहद वाजे साची लिवै बिन देहे निमाणी देहे निमाणी लिवै बाजाहो क्या करे वेचारिया तुद बाज समरथ कोए नाही कृपा कर बनवारिया एस नाओ होर थाओ नाही शब्द लाग सुवारिया कहे नानक लिवै बाजाहो क्या करे वेचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरहु जिनका मोह तुटा तिनका शब्द सच्चै सवारिया कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुरु ते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावै पावै तसु जन दे जिसनु होर क्या करे वेचारिया एक भरम भूले फिरै दह देसो एक नाम लाग सुवारिया गुरप्रसादी मन भया निर्मल जिना भाणा पावै कहे नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावै
आवहु संत प्यारे हो अकथ की करै कहानी करै कहानी अकथ केरी कित दुआरै पाईए तन मन तन सब सौंप गुर कौ हुक्म मन्ने पाईए हुक्म मन्ने हो गुरु केरा गावहु सची बाणी कह नानक सुनो संतो कथे हो अकथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया माया त मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाईया कुर्बान कीता तिसै विटो जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले ए कुटुंब तू जे देखदा चले नाही तेरा नाले साथ तेरा चले नाही तिस नाल क्यों चित लाईए ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पछोताईए सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरा नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले आगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया अंतो ना पाया किने तेरा अपना आप तू जान है जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाणा है आख है ता वेख है सब तू है जिन जगत उपाया कह नानक तू सदा आगम है तेरा अंत ना पाया सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीने सचा मन वसाया जी जंत सब तुद उपाए एक वेख पर सुन आया लब लोभ अहंकार चूका सत गुरु भला पाया कह नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया भगता की चाल निराली चाला निराली भगता हकेरी बिखम मार्ग चलना लब लोभ अहंकार ताज त्रिष्णा बहुत नाही बोलना खन्यो तिखी वालों निकी एत मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आप तजया हर वासना समाणी कहे नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली ज्यों तू चला है तिव चलै स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चलाहे तिवै चलै जिना मार्ग पावहे कर कृपा जिन नाम लाहे से हर हर सदा त्यावहे जिसनु कथा सुनाहे अपने से गुरुद्वारै सुख पावहे कहे नानक सच्चे साहिब ज्यों पावै तिवै चलावहे एहो सोहेला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसया जिन तुर हो लिखिया आया एक फिरह कनेरे कर है गल्ला गली किने न पाया कह नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिनी हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यों पवित संगत सबाईया कहंदे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर तिहाया करमी सहज ना उपजै विण सहजै सहसा ना जाए नह जाए सहसा कितै संयम रहे कर्म कमाए सहस जियो मलीन है कित संयम धोता जाए मन तो वो शब्द लागो हर सिंह रहो चित लाए कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै एह सहसा एव जाए जियो मैले बारोह निर्मल जियो ता मैले तिन जन्म जुए हारिया ए तिशना वड़ा रूप लगा मरण मनहो वेसारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुन है नाही फिर है ज्यो बेतालिया कह नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बारोह निर्मल बारोह ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुचे नाही मनसा सच समाणी जानम रतन जिने खटिया पले सेवन जारे कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुर नाले जे को सिख गुरु सेती सन मुख होवे होवे ता सन मुख सिख कोई जियो रहे गुर नाले
गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मै समाले आप छड सदा रह परणै गुर बिन अवर न जाने कोय कह नानक सुनहु संतो सो सिख सन मुख होए जे को गुर ते वे मुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै पावै मुक्त न होर थै कोई पुछो बबेकियां जाए अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुर मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कहे नानक विचार देखाओ बिन सतगुरु मुक्त न पाए आवहु सिख सतगुरु के प्यारे हो गावहु सची बाणी बाणी त गावहु गुरु केरी बाणियां सिर बाणी जिन कौ नदर कर्म होवै हृदय तिना समाणी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपे हो सारंग पाणी कह नानक सदा गावह ए सची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी त कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आप वखाणी हर हर नित कर है रसना कहया कछु न जानी चित जिन का हिर लया माया बोलन पए रवाणी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ शब्द से ती मन मिलया सचे लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ सेव साकत आप उपाय कह करता आपे हुक्म वरताए हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनो आप करे सो होवै एकस सिउ लिव लाए कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार ना जानी तत्तै सार ना जानी गुरु बाजौ तत्तै सार ना जानी तिहि गुणी संसार भ्रम सुता सुतिया रैण विहाणी गुर किरपा ते से जन जागे जिना हर मन वसिया बोलै अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनो अन दिन हर लिव लागै जागत रैण विहाणी माता के उदर मैं प्रतपाल करे सो क्यों मनहु विसारीऐ मनहु क्यों विसारीऐ ए वरदाता जे अगन मैं आहार पहुँचावै उसनो केहो पोहे न सकी जिसनो अपने लिव लावै अपने लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है कह नानक ई वरदाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अगन उदर मैं तैसी बाहर माया माया अगन सब इको जेही करतै खेल रचाया जात इस भाणा ता जमया परवार भला पाया लिब छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै भाउ दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिना लेव लागी तिनी विचे माया पाया हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए मुल ना पाया जाए किसै बिटहो रहे लोक वेल लाए ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनु सिर सौंपिया विचों आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पलै पाए हर रास मेरी मन वण जारा हर रास मेरी मन वण जारा सतगुर ते रास जानी हर हर नित जपेओ जियो लाहा खटेओ दिहाड़ी एहो धन तिना मिलिया जिन हर आपे पहाणा कहे नानक हर रास मेरी मन हुआ बण जारा ए रसना तू आन रस राच रही तेरी प्यास ना जाए होरत किता है जिचर हर रास पल्लै ना पाए हर रास पाए पल्लै पिए हर रास बौड़ न तृष्णा लागै आए एहो हर रस कर में पाई है सतगुर मिलै जिसे आए कह नानक होर आन रस सब विसरे जा हर वसै मन आए ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी तातू जग मह आया
ਹਰ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜੀਉ ਉਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ ਜੋ ਤਰਾਕੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਮਨ ਚਾਓ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਾਪੇ। ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਨੇਤਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਇਹੋ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਰਵਣ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ ਰਸਨਾ ਰਸ ਸੁਮਾਣੀ। ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਹਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਵਜਾਇਆ ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਇੱਕ ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵ ਨਿਦ ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੈ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਵਜਾਇਆ। ਇਹੋ ਸਾਚਾ ਸੋਹੇਲਾ ਸਾਚੈ ਕਰ ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਸੋਹੇਲਾ ਘਰ ਸਾਚੈ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਧਿਆਵਹੇ ਸੱਚੋ ਧਿਆਵੈ ਜਾ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾ ਬੁਝਾਵਹੇ। ਇਹੋ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵਹੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਹੇਲਾ ਸੱਚੈ ਕਰ ਗਾਵਹੇ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ

ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।

सेवक सेवा करम चढ़ाओ भिन्नी रहन जना मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी क्रम लगाए पार ओलू चक्का चक्की चक तलवार ओले बहुत अनंत लड़ाटू मधानियान गाह पंखी पौंदियां लैना सा सूए चढ़ पवाई है जंत नानक पौंदियां गणत नंद बंधन बंद पवाए सोए पै किरत नचे सब कोए नच नच हसे चले से रोए।

बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लख्या रहा जोत में जो जोत में जाता कलकला भरपूर रहा तू सच्चा साहब से सवाल हो जिनकी ते सो पार पया कहो नानक करते किया बातां जो कुछ करना सो कर रहे महला।

0: सोई नंजन देव महला पहला।
1: कुंभे बद्धा जल रहे जल बिना कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रह
0: गुर बिन ज्ञान ना होए।
2: बड़े गुरु ने गार तो अपनी साधना मारी है, यह काले कलना से भी होना उपचारी है। ऐसी कला न खेड़ी जिधर के गया हारी है, बड़े आत्म में विचार के विचारी है। मुंह चले सो की मारिए मुंह चले।

0: ही को ही बकरा रिन खाया सबको आख पाए होए पुराना सुटिए भी फिर पाई है होर नानक तकना टुटे जे तक होवे जोर महला पहला
1: नाय मन्ने पतु उपजै साला ही सत्सूत अंदर के अंदर पाई है तगना टूट सपूत महला पहला तगना इंद्री तगना नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तगना पैरी तगना

सुख कने कोई न जाने तुमरा अंक ऊचे ते ऊचा भगवान सगल समगिर

सुनिहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह।

0: आनंद मंगल सुख पाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: आओ सत्कार जो सत्संग जी महाराज बख्शी की आप सकते हैं, बड़ी श्रद्धा भावना सहित पवित्र गुरबाणी असके वादे सबूर कीर्तन सरण कीते ने, परंतु अज हुकम नामे की कथा चार सरण की है। सत्संग जी अरदास परे प्रांत महाराज बख्शिश पवित्र हुक्म नामे सरण कीते ने। सो सत दस पातशाह गुरु साहब ने आप गुरु मुखातों बख्शिश किया है। और सत्संग दर्शन तुम्हें पता है कि डड़ीवाल सहज पाठ हो रहे हैं, भाई साहब ठीक 10 बजे तक डड़ीवाल सहज पाठ करेंगे। सो सारी संगत बेनती है जो करंज बैठ के आप डड़ीवाल सहज पाठ कर रहे हैं, सो जरूर भाई रजिंद्र सिंह संपर्क करके अपना नाम नंबर उन्होंने दे दौ। उन्होंने नंबर है 408-712-4145 अपना संपर्क करो, ताकि समय समय सिर तुम्हें जो भी अपना बनेगा इसका जो समय के मुताबिक ये बंदोबस्त करना, ये सारे जी सहज पाठ बद पर चल रहे हैं, इन्हों संपूर्ण भोग पैने ने, होर भी जो समागम होंगे वो बारे आप टेलीफोन करके भाई साहब सूचित कर दिया करे। इस वक्त तो टेलीफोन उन्होंने को होना जरूरी है। सुहाग साहब सिंह जी संगत पता है कि गुरु घर जो नार साल साउथ साल डबल बिल्डिंग बन रही ने, इन्हें बेअंत खर्चा हो रहा है। सब संगत बेनती है, बेअंत प्रोग्राम वालों बेअंत माया आई है, वटभागी हैं जिन्हें अज तक अपना दसा सफल नहीं किया। सारे बेनती है जरूर गुरु घर अपनी माया सफल करके जरूर अपने गुरु के बख्शियां दातों हिस्सा पा के ये जो डबल बिल्डिंग बन रही ने सारी कोशिश करके इन्हों चाढ़ी कला संपूर्ण करने वास्ते गुरु साहब के चरणों के धन्यवाद करिए। सत्संग जी आप संगत बेनती है कि खालसा स्कूल खुल चुका है, सो तुम जरूर आप अपने बच्चों खालसा स्कूल दाखिल करवाओ, पंजाबी पढ़ाओ ताकि गुरबाणी पढ़ सकन और सदा वास्ते गुरसिक्खी नाल जुड़े रहन। सत्संग जी आप संगत बेनती है कि अगस्त 3 है संपूर्ण का पुरब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच पातशाह जी का, इस वे जरूर सत्संग तुम्हें बेनती है कि 30 अगस्त को हाजरियां भरनिया ने। सत्संग जी आप संगत बेनती है सितंबर 11, 12 और 13 31 रागों का कीर्तन वार हो रहा है गुरु घर साहिब जी, सारी संगत बेनती है कि जरूर हाजिरी भरो। अरे जो समाज इस लाभ उठाने अपने हर हालत में जत्र करने ने। सत्संग जी सितंबर 12 है पहला प्रकाश साहब ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी का। सत्संग जी साढ़े वास्ते एक महान पुरब है जो किसी गुरु साहब ने साढ़े से बख्शिश की है, सो असी जरूर इस अपने महाराज साहब चरण धन्यवाद करने शुक्रिया अदा करते खुशियां प्राप्त करिए। और सत्संग जी भाई साहब तैयार ने सारे प्रणाम करके सानू करिए। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह।
0: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी, समा होया अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ दा। अज पावन अंग 1003 तो श्री सहज पाठ प्रारंभ होणगे। आप जी ने प्यार सहित हाजरियां भरनिया हन जी। 1003 अंग तो अज दे श्री सहज पाठ प्रारंभ हो रहे हैं जी।

की बार सगल ले चलिया। निर्भव निरंकार दयालिया, जी जंत सगले प्रतपलिया। रहा एक कै श्रम कर गाडी कड है, एक कै सुपने दाम न चढ़ है। राज कमाए करी जिन थैली, ताकै संग न चंचल चलिया। एक है प्राण पिंड थे प्यारी, एक संची तज बाप महतारी।

सो जन नानक पार ग्रामी भ्रमत भ्रमत प्रभ सरणी आया। दीना नाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द बिदारण जिस भावै तिस ही निस्तारण अंधकूप ते काढ़न हारा प्रेम भगत होवत निस्तारा। साधु रूप अपना तन धारिया महा अगन ते आप उबारिया जप तप संजम इस ते किछ नाही आद अंत प्रभ अगम अगाही। नाम दे मागै दास तेरा हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा मारू महला पंजवा कत।

सदा सदा सुखदाई अपने को कृपा करियो एक नाम त्याई नानक दीन नाम मांगे दुतिया भरम चुकाई मारू महला पंजवा मेरा ठाकुर अतपारा मोहे सेवक बेचारा मोहन लाल मेरा प्रीतम मन प्राणा मोको देहो दाना रहाओ सगले मैं देखे जोई बीजो अवर न कोई जीयन प्रतपाल समा है होसी आहे दया मोहि दीजै देवा नानक लागो सेवा मारू महला पंजवा पतित उदारण तारण बल बल बले बल जाइए ऐसा कोई भेटे संत जित हर हरे हर त्याइए मोको कोए न जानत कहियत दास तुम्हारा इहा ओट आधारा रहो सर्व धारण प्रतपारण एक बिनो दीना तुमरी बिद तुम ही जानो तुम जल हम मीना पूरा

मारू महला पंजवा। तृप्त आघाए संता गुरजाने जिन मंता, ताकि किच कह न जाई जाको नाम बढ़ाई। लाल अमोला लालो अगहै अतोला नामो रहाओ, अविगत स्यों मान्या मानो गुरमुख तत् ज्ञानो। देखत सगल त्यानो तजियो मन ते अभिमानो, निहचल तिन का ठाणा गुर ते महल पछाणा। आन दिन गुर मिल जागे हर की सेवा लागे, पूरन तृप्त अगाए सहज समाध सुभाए। हर भंडार हाथ आया नानक गुर ते पाया, मारू महला पंजवा घर छेवां दुपदे।

मन देहे रहाओ, बिरख छाया जैसे बिनसत, पवन झूलत मेहे, हर भगत दृढ़ मल साध नानक, तेरे काम आवत एहे, मारू महला पंजवा, पुरख पूरन सुख है दाता, संग

बीत साजन सखा बंधप हर एक नानक कियो मारू महल्ला पंजवां। प्रतपाल माता उदर राखै

भगत जना का राखण हारा, संत जीवह जप प्राण अधारा, करण कारण समर्थ स्वामी, नानक किस कुर्बान है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मारू महला नौवा, हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उदरेओ, गनिका हु गत पाई रहाओ। पंचाली को राज सभा में राम नाम सुदयाई, ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई, जेह नर जस कृपा नित गायो ताको भयो सहाई। कहो नानक मैं इही परोसे, कही आन शरणाई, मारू महला नौवा, अब मैं कहा करूरी माई। सगल जन्म बिखियन स्यों खोया, सिमर्यो नाहे कनाई रहाओ। काल फास जब घर में मिली, ते सुध सब बिसराई, राम नाम बिनया संकट में को अब होत सहाई। जो संपत अपनी करमानी, छिन मह पई पराई, कहो नानक यह सोच रही मन, हर जस कबहू न गाई। मारू महला नौवा, माई मैं मन को मान न त्याग्यो, माया के मद जन्म सिरायो, राम भजन नहीं लाग्यो रहाओ, जम को डंड परयो।

जब गुरु चरणन अनुरागियो। सुफल जन्म नानक तब हुआ, जाओ प्रभ जस मह पाग्यो। मारू अष्टपदिया महला पहला, घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वेद पुराण कथे सुने हारे मुनि अनेका, अड़सठ तीर्थ बहु घणा, भ्रम थाके।

कहो नानक मुख द्वार मारू महला पहला। शब्द मरै ता मार मर भागू के

दीन रहाओ। अवगुण सुपार गुण नहीं, बिन गुण क्यों घर जाऊं। सहज शब्द सुख उपजै, बिन भागा धन नाही।

भूले तू समझाए, भूले मार्ग जो दसे किसकै लागू पाए। गुरबिन दाता को नहीं कीमत।

दे, बीजो सूजे को नहीं मन तन पूर्ण दे, जिन किया तिन देखिया आप वडाई दे। नगरी नायक नवतनो बालक लील अनूप, नार न पुरख न पंखनु साचो चतुर स्वरूप, जो तिस भावै सो थीऐ तू दीपक तू धूप, गीत साध चाखे सुने बाद साध तन रूप, सच भावै सच उचवै छूटै सोग विजोग, नानक नाम न विसरै जो तिस भावै सो होग, मारू महला पहला साची कार कमावनी होर लालच बाद, इहो मन साचै मोहिया जिहवा सच साध, बिन नावै को रस नहीं होर चलै बिखलाद, ऐसा

गुर की मत निकी, साची सुरत सुहावनी, मन मुख मत फिकी, ता मन तन तेरा तू प्रभु, सच तीरक तुरकी, सच्चे बैसन उठना, सच भोजन खाया, सच्चे बैसन उठना, सच भोजन पाखिया, चित सच्चे वित्तो सच्चा, साचा रस चाखिया, साचे कर साचे रखे, गुर बचन सुपाखिया, मन मुख कौवाल सकणु, फाथे उजाड़ी, फाथा चुगै नित चोगड़ी, लग बंद विगाड़ी, गुर प्रसादी मुक्त हुए, साचे निज ताड़ी, अनहत लाला बिदया, प्रभ हित प्यारी, बिन साचे जियो जल बलों, झूठे वेकारी, बाद कारा सब होछिया।

ठाउर न ठाऊ, लाल लाल त्या गया पाया हर नाऊ। तू बख्शहता मेल लहे नानक बल जाओ, मारू महला पहला लाल गर्भ छोड़िया। गुर कै पै सहज सुभाई, लाल खसम पछाणिया। वड्डी वड्याई कसम मिलया सुख पाया, कीमत कहन न जाई। लाला गोला खसम का खसम है वड्याई, गुर प्रसादी उभरे हर की शरण आई। रहाओ

उदर पर है जैसे ढूर है। बाबा ऐसी रवत रवै सन्यासी, गुर कै शब्दे क्लिव लागी, तेरे नाम रते त्रिपतासी रहाउ।

माया तारी कर कर बागे जग पर बुद्ध है मन अंध है पतहारी परम पुलाना शब्द न चीने जुए बाजी हारी अंतर अगना गुरबिन बुझ है बाहर कुवर तापै गुर सेवा बिन भगत न हुई गुर सेवा बिन भगत न हुई क्यों कर चीन से आपै निंदा कर कर नरक निवासी अंतरात्म जापै अठसठ तीर्थ परम विगुच है क्यों मल धूपै पापै चाणी खाक विभूत चढ़ाई माया का मग जू है अंतर बाहर एक न जाने साच कहे ते छू है पाठ पढ़े मुख

आओ कृपया साथ सुनिए। आज दे पावन पवित्र दिहाड़ा होला महला अति वैसाखी का पूर्व ये दीवान इन्हों खुशिया के सजे हैं। संगत बड़ी दूर दूर चल के गुरु दरबार दे विच पहुंच रही हैं। पहला शब्द आप जी ने सरवण किया, आओ जी तू आओ हमारे हर जस सरवण सुनावना, तुद आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संगावना। फिर गुरपुरा नमस्कारी प्रभु सभी काज सवा, ऐसी भावना ऐसी श्रद्धा लेके पहुंच रही हैं संगत। सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सोख नाम हर शोभा चिंता लाहे हमार, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए। साडा आउण दा समा सफल हो जाए जे सतगुरां दे चरणां नाल जुड़ के ए श्रद्धा की भावना के नाल कि मालका तेरी सरण दे विच आए हाँ। कृपा करी मेहर प्रिया हथ रखी आने वाले समय दे विच संगता दे सारे कार्य आप जी ने संवारने। सो आओ गुरपुरा नमस्कारी प्रभु सभी काज सवारी।

0: पंचम पिता धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के आगमन पर आप सब संतों में बहुत बहुत बधाइयां हैं और इन्हें खासी प्रमाण कर लो, सारे आशीष बख्शिश करो, फतेह बुलाओ।
1: वाहे गुरु जी का खालसा। वाह।

उस सेवक नु कोई भी दुख पौंदा नहीं जिस सेवक दे सिर ते सतगुरु दा हाथ हुंदा है। सतगुरु जी बाणी च फरमान करदे ने, सब सहे उपर नजर प्रभ तेरी, किसे थोरी किसे है कनीरी। निगाह सतगुरु दी सब दे उपर है, कृपा बरस रही है, पर किसी ते थोड़ी है पर किसी ते बहुत है। जिदे ते बहुत है, जिदे ते सतगुरु दी प्रसन्नता है, सतगुरु जी तुट के उस नूं सतसंगत दी दात दिंदे ने, नाम दी दात दिंदे ने, अपना बना लैंदे ने। उस सेवक दे सतगुरु जी सारे कार्ज रास करदे ने। यही नहीं, ये लोग सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। उस अपने सेवक दे ये लोक ते परलोक दोनों ही सहेले कर देंदे ने, किदे जिदे ते सतगुर दी नजर करे रही है। जो सेवक सतगुरु नूं समर्पित हो जाता है, जो सतगुरु के वचना ते सेवक चलता है, गुरु उस दे उपर कृपा करता है। गुरु प्यारियो, मैं एक गल जरूर कह दिया, हर एक इंसान की कोई ना कोई भटकना है। कोई किते भटक रहा है, कोई किते भटक रहा है, कोई किसे नूं रब मानी बैठा है, कोई किसे नूं रब मानी बैठा है। जिन्ना चिर इंसान ये ओट आसरे बारले तकदा है, उन्ना चिर ये इंसान ये जीव धक्के खांदा है। किदां धक्के खांदा है? फिर एक जोन विच नहीं जांदा, अनंत जोना भोगदा है। पातशाह जी बाणी विच सानू फरमान करदे ने कि देखो, ईमान सुजन्म दुलंभ है, होए ना बार बार। ईमान सुजन्म दिता है, समझ दिती है, ज्ञान इंद्रियां दितियां ने, नेत्र दिते ने, कान दिते ने। पर गुरु प्यारे, मैं आप जी ने एक गल होर भी नाल दस दिया, तुसी कदी विचार करना, कले बैठ के देवते ने हाले मुक्त नहीं होए, उन्हां दे कोल एक विकसित मन है, बहुत विकसित मन है, सातों भी कितने ज्यादा दीवा बलिया होया है। पर लेकिन मुक्त होण वास्ते इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। वो देवते भी इस देही नूं सिमरदे ने, उस नूं कहिंदे ने, हे अकाल पुरख साडे ते कृपा कर, सानू भी मानस जन्म बख्श, ता कि असीं रहिंदा पेंडा जिहड़ा है वह भगती करके तेरी असीं तय कर सकीए, तेरे विच लीन हो सकीए। हुण देवतियां कोल विकसित मन है, पर मुक्त होण वास्ते तन नहीं है। उन्हां नूं भी एक बार फिर माता दे गर्भ तों जन्म लैणा पैंदा है। एक पशु है, उस पशु दे कोल विकसित तन है, बड़ा विशाल तन है, हाथी दे कोल बड़ा ताकतवर शरीर है, शेर दे कोल पर विकसित मन नहीं है उसके कोल। ये मन तन सतगुरु जी ने एक सिर्फ इंसान नूं बख्शा है। जिथे इस नूं मन की दात दिती है, तन की दात दिती है, इत्थे इस नूं सारी समझ भी दिती है। ता ही सतगुरु जी कहिंदे ने कि ऐ जीव, नहीं तो तू इस पौड़ी ते जो नर छुटकै से आए जाए दुख पाएगा। जो ये पौड़ी तेरे हथों छुट गई ना, तो फिर तेरा आउण जाण दा गेट बन जाएगा, फिर की होवेगा। केते रुख विरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग गुली मह आए, केते पंख उड़ाए। कई जूना तू दरख्तां दियां, जानवरां दियां, उड़न वाले पंछियों दियां, पशुओं दियां, सप्पां दियां भोग के आया है। कई जूना तू पत्थरां दियां भी भोग के आया है। केते रुख विरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग गुली मह आए, केते पंख उड़ाए। इस करके इनिया जोना भोगण तो बाद 84 लाख जोना भोगण तो बाद तेनू ए पई प्राप्त मानुख दिहोरिया, गोविंद मिलन की एहो तेरी भरिया। जिहड़ी तू आवागौण दी भटकना शरीर विच रह के कर रहा ने, कदी किसी दे दर ते, कदी किसी दे दर ते, तू उस परमेश्वर दा हो जाए। जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। जदों तू परमेश्वर दा बन जाएगा,
ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਗੇੜ ਨਾ ਬਣੇ, ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੋਨਾਂ ਨਾ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਾਵਜਲ ਫੇਰਾ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਤਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਥਾ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਲ ਕਥਾ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,

0: Is your practice?
1: No, I'm not.

Mm-hmm.

0: ਸਿਮਰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜਲੀ ਦੱਸੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੱਸੇ
1: ਹਰ ਸਿਮਰਨ

ਕਈ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਰਾਜ

ਵਿਦਿਆ ਚਲੋ।

ਜਾਣਿਆ ਘੱਟ ਵਸਿਆ ਹਰ ਨਾਮ।

ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਨੰਬਰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤਿਆਗ ਕੇਵਲ ਲੁਭਾਵਾ

ये प्रसाद आपको घंटा है विद्या मार्जन से घटके और तक की

ਪ੍ਰਸਾਦ

ਸੰਗ

Ramakrishna Charitamrita Charitamrita.

ब्रह्म ज्ञानी जिस तरह का भी आप ब्रह्म ज्ञानी का भक्त

ਬਾਦਸ਼ਾਹ

कौन पानी का दर्शन कई को देश को मंडल अगर लगनी अपने से उतारा है नाना जे जे भावा तेरे ने उतारा है कई कोर की रतन समुद्र कई कोर नाना प्रकार जलते कई कोर चकनर पैसा कई कोर धूप में सुपर मरगा कई कोर पाताल के वासी कई कोर नरसुर्ग निवासी कई कोर बैठक ही खाए कई कोर काला के पाए।

এই পরিষদকে বেঁচে

ஆசீர்வதி நாள்.

ਆਪ ਜਾਣਾ ਬਲਵੰਤ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏ ਜਾਏ ਬਲਵੰਤ

ਜਾਨਾ ਮੁਝੇ ਕਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏ

ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਆ ਚੰਦਰ ਆ

اپنا کھیلا کرنا ہے آپ

ਪ੍ਰਸਾਦ

ਕਰਾਮ ਮਨ ਲਵੇ ਪਾਪ ਹਕੀਦਾ ਕਰ ਲਵੇ ਹੋਰ ਕਰ ਮਜਨ ਕਾਮਿਆਂ

ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ

Thank you.

ਜਾਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ

Thank you.

Yeah.

ਪਹਿਲੇ